नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वागर रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना, प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को, युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगी करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी के मैं। अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8 बजे सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरी की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम सुन पाएंगे 9 बजे हमारा स्वास्थ्य। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर। साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इस कार्यक्रम में जानिए घरेलू नुस्खे, डॉक्टरी सलाह और योग से जुड़ी बातें और खुद को रखिए तंदुरुस्त हर रोज। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम समस्या समाधान। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बताई दी हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10 बजे और 10 बजे कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच। आप कहिए हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10 बजे और इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप ऐसे मिस कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है। तो जुड़े रहिए वागर रेडियो पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज है सबसे खास। तो श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: आज के सुविचार।
1: जब सागर का जल वाष्प बनकर उड़ता है तब वो हमें दिखाई नहीं देता, मेघ उस जल को अपने भीतर छिपा लेते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो जल सदा उनके भीतर छिपा रहे, परंतु जब वायु का वेग उन्हें उड़ाकर किसी पर्वत से ले जाकर के टकरा देता है तब उन मेघों को बरसना ही पड़ता है, क्योंकि यही नियति है, यही प्रकृति है, क्योंकि जल को सागर में जाकर मिलना ही है। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम सत्य अपने मन के मेघों में चाहे जितना छिपाने का प्रयास कर लें, परंतु समय की आंधी उसे वास्तविकता के पर्वत से ले जाकर के टकरा कर हमारे समक्ष ले ही आती है, जिस भय के कारण आप सत्य को सामने नहीं लेकर आना चाहते। एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस भय का सामना करने की तैयारी नहीं की होती। इसलिए सत्य से भागे नहीं, उसे छिपाए भी नहीं, उसे स्वीकार करें, भविष्य की बड़ी विपत्ति से बच जाएंगे। कभी कभी आप सबके जीवन में एक ऐसी विचित्र समस्या अवश्य आती है कि शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाए। क्यों शक्तिशाली से विवाद करने से बचने के लिए आप मौन रह जाते? मानता हूं ऐसा करने से आप एक विवाद से बच जाते, एक संघर्ष से बच जाते, परंतु ऐसा बचाव एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। कैसे? हमारा मौन रहना अनजाने में उसका समर्थन बन जाता है और वो स्वयं को अधिक शक्तिशाली अनुभव करता है, और यहां से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं। तो इसका तोड़ क्या है, ये समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है। ये सामने वाले की शक्ति नहीं जो आपको रोकती है, ये आपके भीतर छिपा भय है जो आपको रोकता है। हाँ, कभी कभी भय आपकी सुरक्षा अवश्य कर सकता है, परंतु साथ साथ ये भी जानना आवश्यक है कि ये भय ही है जो आपको मौन भी रखता है। इसलिए अपने मन से भय को निकालो और खुलकर अनीति का, अन्याय का विरोध कीजिए, और फिर देखिएगा आपका मन कितना मुक्त

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: हमरो घड़ी बोने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
4: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपड़े कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हमरा अपनावी जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
3: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यही जानना चाहूंगी कि जब हमारे किसान भाई बहन बकरी पालन कर रहे हैं तो उसकी उत्तम नस्लों का चयन वो कैसे कर सकते हैं?
1: जी धन्यवाद अंजलि जी। मैं बताना चाहूंगा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज निकाली है, क्योंकि हम अगर हमारे आदिवासी अंचल की बात करें
0: जी जी,
1: तो आज तक बकरी पालन को मुख्य रूप से गरीबों, भूमिहीनों, मजदूरों या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का व्यवसाय माना जाता था।
0: जी बिल्कुल।
1: पर आज की स्थिति में बकरी पालन एक बड़े अच्छे व्यवसाय के रूप में उभर के आ रहा है और इसे बड़े बड़े उद्यमों के रूप में सभी लोग जो है करना शुरू कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: हम अगर सूत्र की बात करें तो पहला सूत्र तो हमें ध्यान में रखना होगा कि हम जिस उद्देश्य से बकरी पालन कर रहे हैं उसके लिए सही नस्ल क्या होगी।
0: जी बिल्कुल।
1: तो सामान्य रूप से यदि हम बात करें कि हमारा बकरी पालन का उद्देश्य क्या है,
0: जी जी,
1: तो यदि हम दुग्ध उत्पादन के लिए बकरी पालन कर रहे हैं तो हमें उसके लिए जो उत्तम नस्लें हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करना होगा।
0: जी जी।
1: इसी तरह से यदि हम मांस के लिए बकरी पालन कर रहे हैं कि हमें उनको इस उद्देश्य से पाल के बेचना है, तो हमें उस हिसाब से इनकी जो नस्लें हैं उनमें से चुनना होगा।
0: जी जी।
1: तो उन्नत बकरी पालन का पहला सूत्र है कि हम उन्नत नस्ल को चुने और ऐसी नस्ल को चुने जो हमारे क्षेत्र में आसानी से समन्वय स्थापित कर पाती हो।
0: जी बिल्कुल।
1: कई बार शायद कुछ किसान बंधु ये गलती करते हैं कि वो ऐसे क्षेत्र से बकरी ले आते हैं उन्नत किस्म की
0: जी जी,
1: जो हमारे क्षेत्र में सेट नहीं हो पाती है।
0: जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हम बकरी पालन कर रहे हैं और बकरियां हम अलग अलग नस्ल की इधर उधर देखकर या किसी के बहलावे फुसले में आकर ले आते हैं, लेकिन वो हमारे क्षेत्र में उत्तम तरीके से कार्य नहीं कर पाए, तो हम देखते हैं कि हमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में हमारे किसान भाई बहनों को सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखना है कि वो जो भी बकरी ला रहे हैं उसका ध्यान रखे कि वो हमारे यहाँ की जलवायु के अनुकूल सेट हो पाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो जलवायु का परिवर्तन है उसी हिसाब से हमें बकरियों का चयन करना है। यही सर, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे किसान भाई बहन उत्तम नस्ल की जो बकरियां हैं वो ले तो आते हैं, उसका चयन तो कर लेते हैं, लेकिन उनके आहार और पोषण का किस तरीके से उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है?
1: जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब अपने व्यवसायिक को बढ़ाने के लिए या अपनी आजीविका के लिए बकरी पालन करते हैं तो इसमें हमें दूसरा है कि आहार और पोषण का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है
0: जी जी।
1: ताकि जिस उद्देश्य से हम बकरी पालन कर रहे हैं वो उतना उत्पादन दे पाए
0: जी जी,
1: जितना हम चाहते हैं। तो इसमें आहार और पोषण की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है।
0: जी बिल्कुल।
1: बकरियों के लिए संतुलित आहार का महत्व बहुत अधिक है। बकरियों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज और विटामिन की उचित मात्रा की आवश्यकता होती है।
0: जी बिल्कुल।
1: उनके आहार में हरा चारा, इसके साथ में सूखा चारा और खनिज लवण शामिल होना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: यदि इतना हम उनके पोषण में, आहार में इतना पोषक देते हैं तो इससे इनकी अच्छी बढ़वार होगी, हमारा उद्देश्य पूरा होगा, उत्पादन पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं
0: पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। तो सर, जैसा कि हम ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपके माध्यम से जान पा रहे हैं कि किस तरीके से बकरी पालन करते समय हमें उनके आहार और पोषण का ध्यान रखना है, वहीं सर हम देखते हैं कि हम मनुष्य की तरह भी हमारे जो जीव जंतु होते हैं, हमारे जो पशु पक्षी होते हैं, उन्हें बीमारियां हो जाती है। तो हमारे जो पशु होते हैं, जैसे कि हम उन्नत बकरी पालन की बात कर रहे हैं, तो बकरियों के स्वास्थ्य का और स्वच्छता का प्रबंधन हमें किस तरीके से करना होगा?
1: जी अंजलि जी, तो हम उन्नत बकरी पालन के सूत्र के रूप में ये तीसरा बिंदु महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो बकरियों को समय समय पर टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है
0: जी जी,
1: क्योंकि इनके अभाव में या तो ये गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं या कई बार किसान को पशु हानि हो जाती है।
0: जी बिल्कुल।
1: जिससे उनके जो उद्देश्य हैं बकरी पालन के वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो पहली चीज तो हम अपने तरीके से अपने बकरी को देखते रहें, समझते रहें कि कहीं उसमें ऐसे कोई लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं जिससे ये लगे कि ये अस्वस्थ है, वो चारा कम खा रही है, वो पानी नहीं पी रही है, वो सुस्त बैठी है, नाक से या आंख से पानी आ रहा है, उनका मल सामान्य है। तो ये सामान्य सी चीजें हैं जिनको देख के हम उनके स्वास्थ्य को समझ सकते हैं।
0: जी जी।
1: और दूसरा इसमें जो पहले भी मैंने बोला कि टीकाकरण समय पे करवाने जरूरी है। अगर हम टीकाकरण समय से करवाते रहते हैं तो इनके बीमार होने की संभावना नगण्य हो जाती
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल सर। सर आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो पशु रोग विशेषज्ञ हैं वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमें समय समय पर हमारे पशुओं का टीकाकरण कराते रहना है ताकि हमारे जो पशु हैं उन्हें बीमारियां कम लगे। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी हम पशुओं की देखभाल करते हैं तो उनके लक्षणों से, हाव भाव से हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारे पशु को किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। नहीं सर, जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही है, अब मैं जानना चाहूंगी कि हमारे जो बकरी पालन जब हम कर रहे हैं तो उनमें उनका आवास का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं?
1: हम बकरी पालन के उन्नत सूत्र में इसको भी रखते हैं। आवास प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रबंधकीय क्षमताओं में से एक है।
0: जी जी।
1: तो बकरियों के जो रहने की जगह होती है उसको हमेशा साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी होता है।
0: जी जी।
1: बकरियों के आश्रय को नियमित रूप से साफ करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे परजीवी नियंत्रण भी आसानी से हो जाता है।
0: जी बिल्कुल।
1: अगर हम उनके आवास को साफ और सुरक्षित रखते हैं तो कई तरह के खतरों से हम उनको बचा पाते हैं।
0: जी जी।
1: और मौसम अनुसार यदि हमें लगता है तो उनके आवास में हल्के फुल्के बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे कि गर्मियों में उन्हें ज्यादा खुलादार वातावरण मिलना चाहिए जिससे हवा का आना जाना बना रहे और उनके आवास में प्राकृतिक रूप से ठंडक बनी रहे। इसी तरह यदि हम ठंड में बात करें तो ठंड से बचाने के लिए इस तरह की रणनीति अपनाई जानी चाहिए या प्रबंधन किए जाने चाहिए जिससे उन्हें ठंड से बचाया जा सके।
0: जी बिल्कुल।
1: और इसी तरह बारिश में उन्हें बारिश से बचाएं, उन्हें पानी से बचा सकें और किसी तरह से जो है वो लंबे समय तक भीगे ना।
0: जी बिल्कुल।
1: अगर हम इनके आवास के प्रबंधन में इन सामान्य सी बातों का ध्यान रखते हैं और इस तरह से उसका प्रबंधन करते हैं तो हमारे उन्नत बकरी पालन से होने वाले लाभ हमें पूरी तरह से मिलेंगे।
0: जी जी।
1: जिससे हमारे उद्देश्य आसानी से पूरे किए जा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो आपके माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि उन्नत तरीके से हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो बकरी पालन कैसे कर सकते हैं। यही सर आपसे मैं अंत में संदेश जानना चाहूंगी जिससे हमारे जो किसान भाई बहन हैं उन्हें और भी कुछ ऐसे सुझाव हो जो बाकी रह गए हो वो मिल पाए।
1: प्रमुख रूप से यदि हम बात करें तो हमने जो बातें की हैं ये बहुत पर्याप्त हैं। बकरी पालन आज के समय में सिर्फ आवश्यकता नहीं रह गई है, ये हमारे आजीविका का एक अच्छा साधन है।
0: जी बिल्कुल।
1: हम परंपरागत रूप से बकरी पालन करते भी आए हैं, पर यदि मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि हम अगर इन सूत्रों का ध्यान रखें तो हम बकरी से मिलने वाले उत्पादन, चाहे वो दूध हो, चाहे उनके होने वाली संतति हो,
0: जी जी,
1: अपने बकरी पालन से पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा आर्थिक लाभ उठा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: जी, आपका और वागड़ रेडियो का धन्यवाद अंजलि जी।
0: ભાઈ બોનો, જેમ કે આપણે આપણે વયસમાં મનીષ સર જોડ્યા તક હતા ને એણે આપણાને ઘણી અસલ તરીકા થકી બતાડી દીધું હે કે ઉન્નત બકરી પાલનના કયા કયા સૂત્ર હે ને હરતે અગર આપણે બકરી પાલન કરવું ચાહી રહ તો સપ્તકી પહેલે આપણાને આપણે જે બી ક્ષેત્રમાં રહી રહ એની જલવાયુને અનુસાર જ એની નસ્લનું ચયન કરવું હે. એની સાથે એણે આવાસનું ધ્યાન રાખવું હે, એણે ખાવાનું પીવાનું ધ્યાન રાખવું હે ને એણે સ્વાસ્થ્યનું બી ધ્યાન રાખવું હોગા. કેમકે આપણે દેખો કે અગર આપણે એને સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન નહીં રાખો, ટાઈમ માટે ટીકાકરણ નહીં કરાવવા તો ઘણા કાની એવી બીમારીઓ જે હે ઈ એને લાગી જાય હે, જેથી કે આપણને નુકસાન ભી થઈ શકે.
2: હવે અંજલિ બોન, તો જેમ કી વાતે તો આપણે ઘણા કની કરીને હવે આપ દીકી રહો કે ટાઈમ થઈ ગયો હે સૂટા પડવાનો, તો સૂટા તો પડ પણ સાથે સાથે સમજી લે એક ઓર કિતને મોરે પડા સૂટા.
0: હવે

0: अंजलिबोन गीत तो आई छो पूरा नरसकी थाते पड़ा सूटा आशा करे की आज जे भी बातें रही कार्यक्रम खेतीबाड़ी में उन्नत बकरी पालन ने लेने ये आपरे किसान भाई बोन ने गमी होगा। किसान भाई बोन आपने हमारो आज नो आ कार्यक्रम केवो लाग्यो एना बारे में आप राय सुझाव आली सको आपरे अणा पता माते।
1: होवे भाई बोनो लकी लो मारू पतु, अमारू पतु है कार्यक्रम खेतीबाड़ी वागड रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। अमारू पिन कोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9460051234।
0: तो किसान भाई बन फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में एक ना विषय ने हाते तारुदी
2: राम राम
0: राम राम।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फॉगर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आपकी साथी अंजलि पारेश्वर और आज का हमारा कार्यक्रम जुड़ा है एक ऐसे विषय से जो हर परिवार, हर माता पिता और हर बच्चे के भविष्य से जुड़ा है। आज हम बात कर रहे हैं 1 सितंबर से शुरू हो रहा है पोषण माह। जी हाँ श्रोता साथियों, पोषण का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं, सही पोषण का मतलब है बच्चों को ऐसा भोजन देना जिससे उसका शरीर मजबूत बने, दिमाग सही तरीके से विकसित हो और वह पढ़ाई से लेकर खेल और रोजमर्रा की गतिविधियों में आगे बढ़ सके। लेकिन क्या हमारे घर में मिलने वाला साधारण भोजन भी बच्चे के लिए पर्याप्त पौष्टिक हो सकता है? कुपोषण की पहचान कैसे करें? आंगनबाड़ी की इसमें क्या भूमिका है और परिवार इस पोषण माह में क्या संकल्प ले सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 महिलाओं की एक छोटी सी कहानी और कहानी के बीच बीच में हमारे विशेषज्ञ भी इन जरूरी सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए सुनते हैं आज का हमारा छोटा सा रेडियो ड्रामा।
1: अरे सीता, जरा इधर आना। मैं तो अपने बेटे मोहन को लेकर बहुत परेशान हूँ। खाना तो वो खाता ही नहीं है, हमेशा थका थका रहता है और पढ़ाई में भी उसका मन ही नहीं लगता।
2: अरे कमला, सिर्फ खाना कम खाने से ही तो ऐसा नहीं होता, तू उसे खिलाती क्या है?
1: बस वही जो घर में बनता है, कभी रोटी सब्जी, कभी दाल चावल। वैसे मुझे लगता है कि पौष्टिक खाना तो बहुत महंगा आता होगा, दूध, फल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब रोज कहाँ से लेकर आऊँ?
2: अरे बहन, ये तो गलत फहमी है, पौष्टिक भोजन का मतलब महंगा भोजन नहीं होता है।
1: तो फिर क्या खिलाऊँ?
2: अरे कमला, हमारे आसपास ही कितनी सारी चीजें हैं, दालें, चना, मूंगफली, बाजरा, मक्का, हरी सब्जियां, मौसमी फल, इन सभी को ही सही तरीके से मिलाकर खिलाया जाए तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को इससे अधिक पोषण मिलता है।
1: हाँ, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा कुपोषित हो रहा है?
2: इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चे का वजन और बढ़ती निगरानी करवा। अगर बच्चे का वजन उम्र के हिसाब से कम है, उसकी बढ़त रुक रही है या वह लगातार कमजोर और सुस्त रहता है, तो समय रहते ही स्वास्थ्य कर्मी की सलाह लेना जरूरी है।
1: अच्छा, मतलब सिर्फ बच्चा मोटा दिखे यही स्वस्थ होने की निशानी नहीं है?
2: बिल्कुल नहीं कमला, बच्चे की उम्र के अनुसार बढ़त, वजन, सक्रियता और विकास भी उतना ही देखना भी जरूरी है।
0: साथियों, जैसा कि अभी कमला और सीता की बातों को हमने सुना, यहीं अब हमारे बीच में विषय विशेषज्ञ जुड़ेंगी। लेकिन उससे पहले मैं मनोरंजन करवाना चाहूंगी आपको एक प्यारे से गीत के साथ में।

0: छोटा सा ट्यू, जैसा कि हमने गीत से पहले कमला और सीता की बातें सुनी कि किस तरीके से कमला जो है वो अपने बच्चे के खाने को लेकर, उसके व्यवहार को लेकर परेशान थी। तो अब आगे जानते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ से कि किस तरीके से राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है, कुपोषण क्या है। तो आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में। मैम नमस्कार।
1: नमस्कार
0: मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागर रेडियो परिवार में। जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रही हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: जी, मेरा नाम डॉक्टर वनीता त्रिवेदी है। वागर रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं यहाँ पे जिला कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में बांसवाड़ा में कार्यरत हूँ।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आपने आपका परिचय हमें बताया और जैसा कि हम सभी 1 सितंबर से लेकर पूरे माह पोषण माह बनाते हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जानना चाहूंगी कि राष्ट्रीय पोषण माह क्यों मनाया जाता है।
1: जी जी, देखिए पोषण माह मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि पोषण माह का मतलब ये है कि पोषण को जन आंदोलन बनाना है। इसका मकसद ये है कि हर परिवार तक ये संदेश पहुंचे कि जो खान पान है वो अपना सही होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए और सही समय पर देखभाल से बच्चों और माताओं को और सभी को कुपोषण जैसी जो गंभीर समस्या है उससे बचाना ही इस जन आंदोलन का उद्देश्य है। तो इसीलिए पोषण माह मनाया जाता है।
0: तो जैसा कि मैम आपने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह क्यों मनाया जाता है, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि बांसवाड़ा में पोषण की स्थिति कैसी है, किस तरीके से यहाँ पर पोषण की चीजें हैं या कुपोषण की जो स्थिति है वो हमें देखने को मिलती है।
1: जी देखिए, बागड़ अंचल में बच्चों में नाटापन और दुर्बलता और महिलाओं में खून की कमी हमें देखने को मिलती है ना। खून की कमी बोले तो अनीमिया, ये एक मुख्य चुनौती है वागड़ अंचल में। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग जो है हमारा और महिला बाल विकास विभाग है, इन दोनों के साझा प्रयास से और जो अपने आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनकी सक्रियता कह सकते हैं या उनकी पोषण ट्रैकिंग की जो सिस्टम है उसकी वजह से अपने यहाँ की स्थिति में सुधार आ रहा है।
0: बिल्कुल,
1: ये हम कह सकते हैं।
0: बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया कि पहले के समय से लेकर अभी के समय में बदलाव आए हैं और सुधार जो है वो निरंतर अपनी प्रक्रिया में है कि किस तरीके से हम लोगों को कुपोषण को लेकर जागरूक कर सकते हैं। यही मैम अब मैं जानना चाहूंगी कि कुपोषण आखिरकार होता क्या है।
1: कुपोषण का अर्थ या कुपोषण क्या होता है ये उसको हम परिभाषित करना चाहें तो सिर्फ भूखे रहना या भूख से नहीं होता है कुपोषण का। हमारे शरीर में जो प्रोटीन है, विटामिन्स है और जो ऐसे बैलेंस जो एनर्जी है उसका एक बैलेंस नहीं होना ये एक कुपोषण है। ऐसे नहीं कि हम भूखे रह गए तो हम कुपोषित हो गए, मतलब जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उसमें प्रोटीन, विटामिन और सारी तरह की चीजों का एक बैलेंस होना जरूरी होता है। अब उसमें जैसे कुपोषण क्या है तो ये बात हो गई, और कुपोषण क्यों है ये अगर जाने हम तो इसके मुख्य कारण जो है वो है कि जन्म के बाद 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: अब बहुत सारे रीजन होते हैं कि वो अपना ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा के और उनको कुछ भी दे देते हैं, गाय का दूध, बकरी का दूध या व्हाटएवर, जो भी पाउडर मिल्क या जो भी। तो एक तो वो नहीं होना चाहिए और 6 महीने बाद एक सही समय पर पौष्टिक प्रिय आहार बच्चे का शुरू करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: तो ये एक रीजन रहता है। और बार बार संक्रमण हो जाए, पेट में कीड़े हो जाए या भोजन में जो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए ना भोजन में।
0: बिल्कुल,
1: एक ही तरह का भोजन अपन नहीं करते हैं। अपने आपको भी पता होगा कि अपने भोजन की थाली विविध प्रकार की होती है, तो इसमें भोजन में विविधता की कमी से भी कुपोषण का शिकार होते हैं बच्चे।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आपने बताया कि कुपोषण क्या है और बच्चे कुपोषित क्यों होते हैं, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि घर में कुपोषण की पहचान कैसे की जा सकती है।
1: ये बहुत आसान है, अगर बच्चा उम्र के हिसाब से उसकी वजन या लंबाई नहीं बढ़ रही है। एक एज होती है ना, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एज होती है, अपन बच्चों में भी कंपैरिजन देखते हैं कि ये बच्चा एक साल का है इतना एक्टिव है, ये बच्चा एक साल का है ये इतना एक्टिव नहीं है, या अपन कंपैरिजन कर लेते हैं, कुपोषण को भी पहचानना बहुत आसान है।
0: बिल्कुल।
1: उम्र के हिसाब से एक तो वजन और लंबाई भी बढ़नी चाहिए। अगर उसके हाथ पैर बहुत पतले पतले हैं, पेट बाहर निकला हुआ दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, चेहरा बेजान सा, बाल बेजान से दिख रहे हैं, बच्चा हमेशा चिड़चिड़ा रह रहा है,
0: बिल्कुल
1: सुस्त रह रहा है, बार बार बीमार हो रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि बच्चे को अतिरिक्त पोषण की या चिकित्सकीय सलाह की बहुत जरूरत है। तत्काल उसको अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है और उसको डॉक्टर की एडवाइस की तुरंत जरूरत लगती है।
0: साथियों, अभी हमारे बीच में विषय विशेषज्ञ जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना। अब यही कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कमला और सीता किस तरीके से और बातों को जान पा रही हैं।
2: अरे सीता, आज तो तूने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन एक बात बता, सिर्फ घर का खाना ही काफी है या आंगनवाड़ी से भी कुछ मदद मिल सकती है?
3: अरे कमला, आंगनवाड़ी की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ बच्चों की वृद्धि की निगरानी, पोषण संबंधित जानकारी और जरूरत के अनुसार सेवाएं भी मिलती हैं। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं महत्वपूर्ण हैं।
2: अच्छा, और सरकार की योजनाओं के बारे में हमें कैसे पता चलेगा?
3: इसके लिए अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य केंद्र से जानकारी लेनी चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा कमला, जब हम उसके बारे में जानेंगे और पात्र होने पर उसका लाभ उठाएंगे।
2: अब समझ आया। बच्चे की अच्छी सेहत सिर्फ माँ की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है।
3: हाँ कमला बहन, और पोषण सिर्फ आज की सेहत के लिए ही नहीं, अच्छी पोषण से बच्चे

0: संकल्प लेकर लोगों को जागरूक कर रही है कि कैसे हमें इन सारी चीजों को अपनाने की जरूरत है। यही अब हम हमारे विशेषज्ञ से आगे जानते हैं कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं चल रही है, माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, पोषण और पढ़ाई का क्या संबंध है, ढेर सारी बातों को। तो आइए सुनते हैं विषय विशेषज्ञ की बातों को। तो जैसा कि मैम आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई है जिससे कुपोषण को कम करने में जागरूकता आ सके।
1: हमारी जो राजस्थान सरकार है वो कई स्तरों पर काम कर रही है। आंगनवाड़ी में भी पोषण 2.0 के तहत पूरक पोषाहार दिया जाता है, है ना। लैक्टेटिंग मदर्स को भी और बच्चों के लिए भी इस तरह की व्यवस्था है आंगनवाड़ी केंद्रों में। और जैसे अनीमिया मुक्त भारत अभियान भी चल रहा है, आप जानते होंगे कि इस अभियान के तहत हम हर मंगलवार को शक्ति दिवस मनाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: है ना। और उसमें आयरन की सिरप और जो ब्लू और पिंक टैबलेट्स हैं जो स्कूलों में देनी होती हैं, जो छोटे बच्चों के लिए पिंक टैबलेट और ब्लू टैबलेट, ये हम स्कूलों में वितरित करते हैं, जो कि हर मंगलवार को स्कूलों में बच्चों को खिलाई जा रही है।
0: जी जी।
1: तो इस तरह से जो अनीमिया मुक्त भारत अभियान है ये भी सरकार का प्रयास है, है ना। और जो पोषाहार दिया जा रहा है आंगनवाड़ी केंद्रों पर ये भी सरकार का प्रयास है। तो गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए हमारे हॉस्पिटल में भी माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर बना हुआ है, NRC कहते हैं कहीं पे, न्यूट्रिशन के लिए और माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर बना हुआ है, जहाँ पे कुपोषित जो बच्चे हैं उनको पहचान कर वहाँ पे 14 दिन तक रखकर बच्चे का निःशुल्क इलाज किया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और क्योंकि जैसे माँ भी, छोटा बच्चा है तो माँ भी उनके साथ रहेंगी, तो माँ की भी कोई आजीविका सफर हो रही है, इसलिए उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी योजना है सरकार की। अपने अस्पताल है ना, जो महात्मा गांधी अस्पताल, वहाँ पे माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर बना हुआ है, अलग से वहाँ स्टाफ है, 10 बेड है वहाँ पे, और वहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क इलाज और उसका बच्चे का खान पान और सारी तरह की वहाँ पे रख के बच्चे की मॉनिटरिंग की जाती है, और माँ को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। एक तो ये योजना है, एक प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना भी है जिसमें भी आर्थिक सहायता दी जाती है। तो इस तरह की सरकार की पॉलिसीज हैं कि जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तो आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वाला जो है पोषण ट्रैकिंग सिस्टम, एक अनीमिया मुक्त भारत अभियान है, एक अपना ये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना है, और एक हमारा MTC है। तो इस तरह की सरकार की योजनाएं भी हैं। तो लोगों को आपके रेडियो के माध्यम से मैं जागरूकता भी लोगों में आए, तो मैं दोबारा ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमें किसी भी तरह से पोषित रहने की, मतलब ऐसी कोई हमारी मजबूरी नहीं है, सरकार ने बहुत चला रखी है, बस आपके रेडियो के माध्यम से लोग जाने और जागरूक हो, मेरा यही रिक्वेस्ट है।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम हम राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है?
1: देखिए, माता पिता को, एक तो आप अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, कई बार अपने बच्चे की इन चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि बच्चा थका थका रह रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है या बार बार बीमार पड़ रहा है, तो हमें तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हमारे बच्चे में कोई ना कोई, हमें डॉक्टर की सलाह लेना और उसके इस चीज को, उसका निवारण करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: हम ये नहीं कहते कि आप उनको महंगे महंगे काजू बादाम खिला दो या फल फ्रूट महंगे महंगे खिला दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस हमारी एक जो विविध थाली होती है भोजन की, जिसमें दाल हो, हरी सब्जियां हो, इस तरह की चीजें हो, तो माता पिता को ये देखना चाहिए कि एक तो बच्चा साफ सफाई का ध्यान रखे और एक समय पे उसको खाना मिलता रहे। एक अगर उसमें इस तरह की कोई चीजें देखने को मिल रही है, उम्र के हिसाब से उसकी वजन नहीं बढ़ रही है, लंबाई में कोई दिक्कत है या उसका तरह का कोई चीज है, तो ये पहचान के लक्षण उनमें क्लिक होने चाहिए और तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और ये सरकारी योजनाएं जो भी हैं उनका तुरंत फायदा उठाना चाहिए।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि आपने माता पिता की क्या जिम्मेदारी बनती है इस चीज को लेकर हमें बताया है, यही अब बात आती है कि पोषण और पढ़ाई का आपस में क्या संबंध है?
1: जी जी, बहुत बहुत, इसका तो बहुत सीधा स्ट्रॉन्ग संबंध है। देखिए, अगर इंसान का दिमाग है, मतलब अपने ह्यूमन बीइंग, मानव के दिमाग की बात करें अपन इंसान की, तो 80% जो दिमाग का विकास होता है ना, वो शुरुआती सालों में ही हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर नींव कमजोर होगी तो बच्चा स्कूल में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, जल्दी थक जाएगा, उसकी याददाश्त इतनी नहीं रहेगी,

0: कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बसता है
1: बिल्कुल।
0: तो लाइक इनिशियल 5 ईयर्स से पहले पहले अगर बच्चे को सारी चीजें न्यूट्रिशन सही मिले, साफ सफाई रहे, उसके अंदर खून की कमी ना हो और उसको सारे प्रोटीन विटामिन्स और आयरन का जो भी सप्लीमेंट्स है वो प्रॉपर मिले उसके फूड में, तो बच्चा बहुत अच्छा, मैं ये तो नहीं कहती कि वो बन जाएगा कि कोई चमत्कारी हो जाएगा, लेकिन हाँ वो बच्चा स्वस्थ रहेगा और आने वाले जीवन की जो भी चुनौतियां हैं उनसे आराम से वो सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि एक शरीर स्वस्थ होगा तो उसमें दिमाग भी स्वस्थ रहेगा।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम कार्यक्रम में बातें बहुत अच्छी चल रही है, यही अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्थानीय भोजन कितना फायदेमंद होता है।
0: बिल्कुल, स्थानीय भोजन में ही सब कुछ है। अपने यहाँ तो बांसवाड़ा की धरती तो सबसे बेहतरीन आहार हमें देती है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि पोषण का दाम से क्या लेना देना नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: हमें काजू बादाम या सेब या इस तरह के महंगे महंगे फल फ्रूट या महंगे ड्राई फ्रूट खाने की जरूरत नहीं है। हमारी जो बांसवाड़ा की धरती है वो हमें बेहतरीन आहार देती है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे यहाँ मक्का है, हमारे यहाँ ज्वार है, चना है, दालें हैं, मोरिंगा है ना, जो सहजन कहते हैं जिसे, सहजन की फली है, उसकी पत्तियां हैं, हरी सब्जियां हैं, इस तरह की बहुत सी स्थानीय चीजें हैं बाजार, जो कि जो डिब्बा बंद खाने का जो सिस्टम चल पड़ा है ना कि बाहर जंक फूड खाएं या इस तरह का कोई डिब्बा बंद खाना खाए, उससे बेटर है, उससे कहीं गुना बेहतर है।
1: बिल्कुल।
0: बस इसको आप साफ सफाई से और नियमित खाएं, आप अपनी थाली में विविध प्रकार के भोजन को सजा के खाएं कि जिसमें कि चपाती हो, चावल हो, दाल हो, हरी सब्जियां हो, तो ये इनफ है। गुड़ है, मूंगफली है, चना है, तो काफी चीजें हैं जो हमारे लिए इनफ होती हैं हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आपने हमें बताया कि स्थानीय भोजन हमारे लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि ये पोषण माह हम जो बना रहे हैं उसमें आंगनबाड़ी की क्या भूमिका है।
0: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो कह सकते हैं कि सोल्जर है जमीनी स्तर पे, तो उस क्षेत्र में जहाँ आंगनबाड़ी है वहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो वहाँ की कह लीजिए कि इस चीज के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है कि वहाँ अपनी आंगनवाड़ी पे वो हर बार जब भी हेल्थ डे होता है तो उन वजन से लेकर के सलाह देने तक का हर काम करती है वो।
1: बिल्कुल।
0: वजन लेना, उनकी लंबाई मापना, उनकी ट्रैकिंग करना और मतलब उनके माता पिता को भी जो लाइक जैसे ANM सिस्टर होती है, आशा सिस्टर होती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है, इनका तो बहुत ही बेसिक इसमें भूमिका है कि एक स्वस्थ माँ रहे और उससे एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो।
1: बिल्कुल।
0: उसके लिए वो पूरी तरह से वहाँ पे तैनात हैं, हमारे कह सकते हैं आप एक सिपाही की तरह, कि जीवन के पहले 1000 दिन जो है गर्भावस्था से लेकर के 2 साल तक, चूंकि पूरा ध्यान माँ के और बच्चे के पोषण पे देना होता है, उसके लिए पूरी तरह वही जिम्मेदार है, वही करती है, है ना, उनको काउंसिल करना, उनको सलाह देना, उनको सरकारी योजनाओं के बारे में बताना, उनको बुला के लाना, उनका वजन करना, उनके सारी जांचें करवाना, तो काफी उनको सरकारी योजनाओं के बारे में बताना, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायिका, ANM सिस्टर, इनका तो बहुत बड़ा रोल होता है ना। ANM सिस्टर उनका सारा टीकाकरण करवाती है समय समय पे, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी है जो पूरा उनके पोषण का और सारी सलाह का ध्यान रखती है।
1: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो यही अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस माह परिवार क्या संकल्प ले जिससे ये पोषण माह जो हम मना रहे हैं वो सफल हो पाए।
0: बहुत अच्छा सवाल है अंजलि आपका, कि वागड़ रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं से मेरा हर परिवार से यही अनुरोध रहेगा कि इस माह अपने को ये संकल्प लेना है कि घर की थाली हम रंग बिरंगी बनाएं, बाहर का जंक फूड छोड़ें और स्थानीय अनाज को हम अपनाएं, हरी सब्जियों को अपनाएं। सुपोषित बचपन होगा तो एक सशक्त और एक स्वस्थ बांसवाड़ा बन पाएगा, मेरा यही कहना होगा कि हमारे बांसवाड़ा में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं वो अगर उनका बचपन सुपोषित होगा तो एक सशक्त और एक स्वस्थ बांसवाड़ा की आधारशिला यही बनती है।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी परिवारों से रिक्वेस्ट है कि हमें स्थानीय चीजें अपनानी है, हमें हमारी धरती जो पैदावार दे रही है उसका पूरा सम्मान करते हुए हमें हमारे जो भी स्थानीय चीजें हैं उनको खाना है, उनको अपने पोषण में इंक्लूड करना है।
1: बिल्कुल।
0: और हमारी थाली को पूरी रंग बिरंगी बना के और जंक फूड को अवॉइड करना है, यही मेरा कहना रहेगा।
1: बिल्कुल। तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: थैंक यू अंजलि, थैंक यू वेरी मच।
1: तो साथियों, आपने जाना विशेषज्ञ के माध्यम से कि पोषण के लिए जरूरी नहीं कि हमारी थाली महंगी हो, हमारे आसपास मिलने वाले स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थ भी पोषण का अच्छा स्रोत हो सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम सच्चा बचपन से हम विदा लेना चाहेंगे। अंत में कहना चाहूंगी, बच्चे को देंगे सही पोषण, बढ़ेगा उसका तन और मन, हर थाली होगी पौष्टिक, हर बच्चा होगा स्वस्थ और सक्षम। आप सभी को आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: भाइयों ने बोनो जईवरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नती माँ जंगल थकी जुड़ू बोनों रिश्तो है। जे जंगल में हमसे हैं ई इन्होंने रक्षा करे हैं। तो आवो बोना ने भागीदारी बढ़ावा ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल अनु भविष्य सुरक्षित करा। बोना ने आवाज विकास की असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवू आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
3: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरो ने हाथे मली में जावो है। फार्म भरो जानकारी लो जमीन माते नाम लकड़वो काटो नती जैवरे अधिकार हमर अपना भी जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह।
2: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हम बात करने वाले हैं, हर शुरुआत बेहतर बनने का एक नया मौका है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, जैसे कि हर सुबह सिर्फ एक नया दिन लेकर नहीं आती, बल्कि अपने साथ एक नई शुरुआत का अवसर भी लेकर आती है।
0: जी जी,
1: कल चाहे जैसा रहा हो, आज को बेहतर बनाने की संभावना हमेशा हमारे हाथ में ही होती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि जीवन निरंतर आगे बढ़ने का नाम है। इसमें कभी सफलता मिलती है तो कभी हमें असफलता मिलती है। श्रोताओं, कभी रास्ते हमें आसान लगते हैं तो कभी छोटी सी मंजिल तक पहुंचने में भी हमें बहुत मेहनत लगती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जीवन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत संभव होती है। कोई परीक्षा अच्छी नहीं गई, किसी काम में असफलता मिली, किसी लक्ष्य को हासिल करने में देरी हुई या किसी फैसले से मन मुताबिक परिणाम नहीं मिला, इनमें से कोई भी चीज जीवन की अंतिम कहानी नहीं है। श्रोताओं, ये केवल उस कहानी का एक अध्याय है। अगला अध्याय हम पहले से बेहतर लिख सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और विषय भी हम आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हर शुरुआत बेहतर बनने का एक नया मौका होती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि गीत से पहले भी आपने बताया था जागृति जी, कि हर सुबह सिर्फ एक नया दिन लेकर नहीं आती बल्कि अपने साथ एक नई शुरुआत का अवसर भी लेकर आती है।
1: बिल्कुल,
0: खासकर युवाओं के लिए तो ये विचार काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवावस्था सपनों, संभावनाओं, प्रयोगों और सीखने का समय होती है।
1: जी हाँ
0: साथियों, इस उम्र में कई बार हम अपने भविष्य को लेकर असमंजस में रहते हैं। हमें लगता है कि अगर एक बार गलती हो गई तो शायद सब खत्म हो गया।
1: जी हाँ,
0: अगर एक परीक्षा में कम अंक आ गए, अगर मनचाहा अवसर नहीं मिला, अगर किसी प्रतियोगिता में सफलता नहीं मिली या किसी रिश्ते अथवा दोस्ती में निराशा हुई है तो हम अपने आप को असफल मानने लगते हैं साथियों।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक घटना आपकी पूरी पहचान तय नहीं कर सकती। असफलता आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आपको ये समझाने के लिए आती है कि अगली बार आपको क्या बेहतर करना है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि नई शुरुआत का मतलब हमेशा कोई बहुत बड़ा फैसला लेना नहीं होता है। कई बार हम देखते हैं श्रोता साथियों कि नई शुरुआत बहुत छोटी होती है। सुबह समय पर उठना, पढ़ाई के लिए 1 घंटा नियमित करना, किसी नई कला को सीखना, अपनी गलत आदत को धीरे धीरे बदलना, किसी जरूरी काम को टालना बंद करना या अपने लक्ष्य के लिए आज एक छोटा कदम उठाना, ये सभी नई शुरुआत के उदाहरण हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम अक्सर सोचते हैं कशिश कि बदलाव एक ही दिन में होना चाहिए। हम तय करते हैं कि अब से सब कुछ बिल्कुल बदल देंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी दिनचर्या लौट आती है। इसीलिए युवाओं के समझना बहुत जरूरी है कि बेहतर बनने की यात्रा अचानक होने वाला परिवर्तन नहीं है दोस्तों, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है।
0: जी हाँ।
1: हर दिन खुद से ये पूछना चाहिए कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ।
0: बिल्कुल, क्योंकि युवा साथियों, अतीत को बदला नहीं जा सकता।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन उससे मिलने वाली सीख को भविष्य में जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि पिछली बार तैयारी आपके द्वारा कम की गई थी तो इस बार तैयारी बेहतर की जा सकती है।
1: जी हाँ,
0: अगर समय का सही उपयोग नहीं हुआ जागृति जी, तो अगली शुरुआत समय सारणी बनाकर हमारे युवा साथी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर किसी निर्णय का परिणाम अच्छा नहीं रहा साथियों, तो अगली बार निर्णय लेने से पहले अधिक सोच विचार किया जा सकता है। यानी कि सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी गलतियों को अपनी पहचान आप न बनने दें।
1: बिल्कुल,
0: गलती होना ये साबित नहीं करता युवा साथियों कि आप

0: कमजोर हैं। गलती तो हमें ये बताती है जागृति जी कि हमें कुछ नया सीखने का अवसर किस प्रकार से मिल रहा है।
1: जी हाँ,
0: जो युवा अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वे धीरे धीरे अधिक समझदार, आत्मनिर्भर और मजबूत भी बनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि गलत कदम जीवन का अंत नहीं, सही दिशा में उठाया जाने वाला अगला कदम भी हो सकता है।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि असफलता के बाद शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण होती है। युवा जीवन में असफलता से सामना होना स्वाभाविक है।
0: बिल्कुल,
1: हर व्यक्ति हर परीक्षा में सफल नहीं होता है दोस्तों, हर प्रयास का परिणाम मन चाहा भी नहीं मिलता है, हर अवसर हमारे पक्ष में भी नहीं आते, लेकिन असफलता के बाद हम क्या करते हैं यही हमारे भविष्य को प्रभावित करता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कशिश कि कई बार असफलता हमें भीतर से निराश कर देती है, हमारा मन उदास होने लगता है, हमें तनाव होने लगता है और हम देखते हैं कि हमने जितनी मेहनत की थी वो बेकार चली गई, हम ऐसा सोचने लग जाते हैं।
0: जी जी।
1: लेकिन श्रोताओं जरा सोचिए, दूसरी नजर से देखिए कि क्या वास्तव में मेहनत बेकार गई? नहीं, उस प्रयास ने आपको अनुभव दिया, आपकी कमियां दिखाई और अगली तैयारी के लिए दिशा दी।
0: बिल्कुल,
1: अगर कोई युवा किसी प्रतियोगिता में सफल नहीं हुआ है दोस्तों, तो वो अपनी तैयारी की समीक्षा कर सकता है। अगर किसी काम में अपेक्षित परिणाम नहीं मिला है तो वो अपनी रणनीति भी बदल सकता है।
0: जी हाँ,
1: शुरुआत दोबारा करना कमजोरी नहीं है बल्कि हिम्मत की निशानी है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। साथी अगर बात करें तो युवा साथियों, तुलना छोड़कर अपनी यात्रा पर आप ध्यान दें।
1: जी हाँ,
0: तो इस विषय को लेकर आगे हम कार्यक्रम में ढेर सारी बातें और भी जानेंगे जागृति जी, और जानेंगे कि ये जो बात कही गई है कि तुलना छोड़कर हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना है वो क्या है।
1: बिल्कुल,
0: तो बातें जरूर होंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी, हम बात कर रहे थे, हर शुरुआत बेहतर बनने का एक नया मौका हमें देती है।
1: बिल्कुल,
0: यही अगर आपको बताए तो तुलना छोड़कर अपनी यात्रा पर हमें ध्यान देना चाहिए। यानी कि कशिश, आज के समय में युवाओं के सामने तुलना की एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोशल मीडिया पर हमें हर तरफ लोगों की उपलब्धियां दिखाई देती है, किसी ने नौकरी हासिल कर ली, किसी ने अपना व्यवसाय शुरू कर लिया, किसी ने कोई पुरस्कार जीत लिया, कोई नई जगह घूम रहा है। इन्हें देखकर कई युवा सोचने लगते हैं कि सब आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन दोस्तों, हमें समझना होगा कि हर व्यक्ति की शुरुआत, परिस्थिति, क्षमता और यात्रा अलग अलग होती है। किसी और की गति को देखकर हम अपनी यात्रा को छोटा नहीं कर सकते। हमारा मुकाबला किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने कल के रूप से होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: आज अगर हमने कल से थोड़ा बेहतर काम किया तो आपने प्रगति की है। आज अगर आपने एक नई चीज सीखी दोस्तों, एक गलती सुधारी या अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम बढ़ाया, तो ये आपकी शुरुआत सफल है।
1: बिल्कुल जागृति जी। साथी जागृति जी, हम देखते हैं कि कई बार युवा साथी बड़ा सपना देखकर शुरुआत ही नहीं कर पाते।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी उपलब्धि कभी न कभी एक छोटे कदम से शुरू हुई होती है।
0: बिल्कुल,
1: अगर आप कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो पहले दिन विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ाई में सुधार करना चाहते हैं तो पूरी किताब एक दिन में खत्म करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो शुरुआत एक विषय या एक घंटे से भी हो सकती है।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, छोटा कदम भी कदम होता है। लगातार उठाए गए छोटे कदम ही एक दिन बड़ी दूरी तय करते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि कई युवा ये सोचते हैं कि अगले महीने से मैं शुरू करूंगा, परीक्षा खत्म होने के बाद शुरू करूंगा, अभी परिस्थितियां ठीक नहीं है, जब समय मिलेगा तब सीख लूंगा। इस तरह सही समय का इंतजार करते करते कई अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं। श्रोतो,
1: बिल्कुल,
0: वास्तव में शुरुआत के लिए सबसे अच्छा समय अक्सर वही होता है जब हम निर्णय लेते हैं। परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल होने का इंतजार करने के बजाय उपलब्ध परिस्थितियों में पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है दोस्तों।
1: जी जी।
0: क्योंकि शुरुआत करने के बाद ही रास्ते दिखाई देने लगते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें कि खुद को बदलने की शुरुआत खुद से कैसे होती है, तो साथियों, हम अक्सर चाहते हैं कि परिस्थितियां बदले, लोग बदले, व्यवस्था बदले और अवसर हमारे पास ही आए।
0: जी हाँ।
1: लेकिन कई बार सबसे पहला बदलाव खुद में करना पड़ता है। अपनी सोच बदलना, अपने समय का सम्मान करना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना साथियों, और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना,
0: जी हाँ,
1: यही बेहतर भविष्य की नींव होती है जागृति जी। अगर आप साथियों हर दिन खुद से एक छोटा सा सवाल पूछें कि मैं आज अपने लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी।
0: बिल्कुल।
1: और जब सोच बदलती है जागृति जी, तो निर्णय बदलते हैं और निर्णय बदलने से आदतें बदलती हैं।
0: जी हाँ।
1: और जब आदतें बदलती हैं तो जीवन की दिशा भी बदल सकती है साथियों।
0: बिल्कुल, तो हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कशिश, कि जिंदगी में अगर कभी आपको लगे कि आप पीछे रह गए हैं, तो वहीं रुक मत जाइए। अगर कोई सपना अधूरा रह गया है तो उसे नए तरीके से आप पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई रास्ता बंद हो गया है तो दूसरा रास्ता जरूर खोजिए। अगर पहली कोशिश सफल नहीं हुई है तो अपनी तैयारी को बेहतर करके फिर से प्रयास कीजिए। आपके सामने अभी बहुत से अवसर है, आपको हर दिन खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है।
1: जी हाँ।
0: आपको बस हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की जरूरत है। अपने बीते हुए कल को लेकर पछतावे में समय मत गवाइए श्रोताओं, आने वाले कल की चिंता में आज को मत खोइए। आज आपके पास जो समय है वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: बिल्कुल,
0: अगर आप सच में अपने जीवन में बेहतर शुरुआत करना चाहते हैं श्रोता साथियों, तो आज से कुछ छोटे छोटे कदम जरूर उठाइए।
1: जी हाँ।
0: एक स्पष्ट लक्ष्य को आप चुनिए, अपनी एक अच्छी आदत शुरू कीजिए, एक ऐसी आदत कम कीजिए जो आपके समय या ऊर्जा को बेवजह खर्च करती हो। हर दिन कुछ नया सीखिए, किताब पढ़िए, अनुभव व्यक्ति से मिलिए, अपनी प्रगति की तुलना केवल अपने पुराने रूप से कीजिए। असफलता के बाद खुद को दोष देने के बजाय कारण भी खोजिए। छोटी उपलब्धियों का भी सम्मान कीजिए, क्योंकि वही बड़े बदलाव की शुरुआत होती है।
1: जी हाँ जागृति जी, तो ऐसे में कार्यक्रम के माध्यम से अंत में हम हमारे दोस्तों को यही कहना चाहेंगे कि साथियों, आप इतना याद रखिए कि जीवन हमें बार बार शुरुआत करने का अवसर देता है। सूरज हर सुबह हमें यही संदेश देता है कि पिछली शाम चाहे जैसी रही हो, एक नई सुबह फिर आती है। उसी तरह जीवन में भी कोई गलती, कोई असफलता या कठिन दौर आपकी पूरी कहानी नहीं है श्रोता साथियों।
0: बिल्कुल,
1: हर शुरुआत अपने भीतर बदलाव की संभावनाएं लेकर आती है। इसलिए अगर कल कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आज बेहतर करने की आप कोशिश कीजिए।
0: जी हाँ।
1: अगर पिछली कोशिश अधूरी रह गई तो नई ऊर्जा के साथ फिर शुरुआत कीजिए।
0: बिल्कुल,
1: अगर रास्ता कठिन है तो अपनी गति धीमी कर लीजिए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि बेहतर बनने के लिए किसी चमत्कार की नहीं एक ईमानदार शुरुआत की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल, इसलिए हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि याद रखिए, बीता हुआ कल सीखे, आज का दिन अवसर है और आने वाला कल हमारी नई कहानी है। हर दिन थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा बदलेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कशिश सच यही है कि हर शुरुआत केवल शुरुआत नहीं होती, वो बेहतर बनने का एक नया मौका होती है।
1: जी हाँ जागृति जी, इन्हीं बातों के साथ श्रोता साथियों, अब जैसा कि कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहेंगे एक और गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागदरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो युवा साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: ही माटी में जमी हूँ और माटी तकीस जाने जाऊँ हूँ। मैं खेत हमारा बीज बोया वो पसंद बहाई वो विश्रम करो तो पसे बाप दादा ने जमीन आते मारो अधिकार किम नती सूरी जन्म तकीस हकदार है कानून ने आ बात मानी है न पन्या पुटे तेरा हक को ले सके न रवाज अन सच में बदली सके बाप दादा ने जमीन सूर्य नो अधिकार सूर्य नो हक इन्हें पहचान
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित नमस्कार साथियों आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वॉकेट रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है स्वराज की पहली सीढ़ी जिम्मेदार नागरिक को लेकर। अंजलि, हम बताया हमारे श्रोता साथियों को, तो स्वराज केवल अपने अधिकारों की बात करना नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाना भी है। जिस दिन एक नागरिक ये सोचने लगे कि मेरे गांव, मेरे समाज और मेरे देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसी दिन स्वराज की असली शुरुआत शुरू हो जाती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत का क्यों ना पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वाकर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं स्वराज की पहली सीढ़ी जिम्मेदार नागरिक को लेकर। तो अंजलि, स्वराज केवल शासन व्यवस्था में बदलाव का नाम नहीं है, स्वराज तो उस सोच का नाम है जहाँ हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को भी समझता है और अपने गांव, समाज तथा देश के विकास में अपनी जिम्मेदारी निभाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, जब हम स्वराज की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और अपने निर्णय स्वयं लेने की भावना आती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, क्या केवल अधिकार मिल जाने से स्वराज स्थापित हो जाता है? क्या अपने अधिकारों की मांग करना ही एक अच्छे नागरिक की पहचान है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि जागृति जी, स्वराज की वास्तविक सफलता तब होती है जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी स्वीकारता है। इसलिए कहा जाता है कि स्वराज की पहली सीढ़ी एक जिम्मेदार नागरिक है।
0: जी हाँ अंजलि, स्वराज की पहली सीढ़ी को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि अपने जीवन, अपने समाज, अपने विकास से जुड़े निर्णयों में सक्रिय भागीदारी निभाना बहुत जरूरी है। ये भावना तभी मजबूत हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति समझे कि समाज को बेहतर बनाना केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। हम सभी इस व्यवस्था का हिस्सा है और इसीलिए हमारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: बिल्कुल। इसी के साथ कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से जागृति जी कि जिम्मेदार नागरिक आखिरकार होता कौन है?
0: बिल्कुल।
1: तो साथियों, जिम्मेदार नागरिक वह है जो अपने हित के बारे में नहीं सोचता बल्कि समाज और समुदाय के हित को महत्व देता है। वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहता है लेकिन साथ ही अपने कर्तव्यों को भी ईमानदारी से निभाता है। कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों कि एक जिम्मेदार नागरिक कानून का सम्मान करता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करता है, पर्यावरण को बचाता है, पानी की कीमत समझता है, स्वच्छता बनाए रखता है और जरूरत पड़ने पर समाज के साथ खड़ा होता है। जिम्मेदारी केवल बड़े कार्यों में नहीं दिखाई देती। अपने घर के आसपास कचरा न फैलाना, पानी व्यर्थ न बहने देना, पेड़ पौधों की देखभाल करना, सड़क पर नियमों का पालन करना, विद्यालय और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना जैसे छोटे छोटे कार्यों में भी जिम्मेदार नागरिकता का हिस्सा है।
0: बिल्कुल। हम कह सकते हैं कि बदलाव की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। हम अक्सर ये कहते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, प्रशासन को वो करना चाहिए, गांव में ये सुविधा होनी चाहिए, समाज में ये बदलाव आना चाहिए। हमारी मांगे उचित हो सकती है श्रोताओं, लेकिन इसके साथ हमें यह भी पूछना चाहिए कि इस बदलाव में मेरी भूमिका क्या है। अगर हम स्वच्छ गांव चाहते हैं अंजलि, तो हमें स्वयं स्वच्छता की शुरुआत करनी होगी। अगर हम पानी बचाना चाहते हैं श्रोताओं, तो हमें अपने घर से जल संरक्षण की शुरुआत करनी होगी। अगर हम शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, तो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना भी हमारी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल।
0: यही आत्म जिम्मेदारी स्वराज की पहली सीढ़ी है।
1: बिल्कुल। यही अब जागृति जी बात आती है अधिकार और कर्तव्य साथ साथ। जी हाँ श्रोता साथियों, लोकतंत्र हमें अनेक अधिकार देता है।
0: बिल्कुल।
1: हमें अपनी बात कहने, निर्णय में भाग लेने और अपनी आवश्यकताओं को सामने रखने का अधिकार है, लेकिन अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारी आवाज सुनी जाए, तो हमें दूसरों की आवाज भी सुननी होगी। यदि हम अपने अधिकारों की रक्षा चाहते हैं, तो हमें दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी करना होगा।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए श्रोता साथियों, एक जिम्मेदार नागरिक कहता है कि मुझे क्या मिला के साथ साथ मैंने समाज को क्या दिया। यही सोच व्यक्ति को अधिकार मांगने वाले नागरिक से जिम्मेदारी निभाने वाला नागरिक बनाती है।
0: बिल्कुल।
1: इसी के साथ कहना चाहेंगे कि गांव के विकास में नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि गांव का विकास केवल सड़क, भवन या सरकारी योजनाओं से नहीं। वास्तविक विकास तब होता है जागृति जी, जब गांव के लोग अपने विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बनते हैं।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि गांव की समस्याओं को समझना, प्राथमिकता तय करना, योजनाओं की जानकारी लेना और उनके क्रियान्वयन पर नजर रखना नागरिक भागीदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: बिल्कुल।
0: अगर गांव में पानी की समस्या है, तो लोग मिलकर जल स्रोतों की स्थिति समझ सकते हैं, वर्षा जल को बचाने के उपाय कर सकते हैं और जल के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जागरूकता फैला सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अगर गांव में स्वच्छता की समस्या है, तो केवल सफाई कर्मी की प्रतीक्षा करने के बजाय समुदाय स्वयं भी स्वच्छता अभियान चला सकता है। जब गांव के लोग अपने विकास में सहभागी बनते हैं श्रोताओं, तब स्वराज मजबूत होता है।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि जागृति जी, कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे विषय पर हमारी श्रोता साथियों से बातें चल रही हैं। ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: जागरूक रहना भी उतना ही जरूरी है। जब नागरिक निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं तो लोकतंत्र जमीनी स्तर पर मजबूत होता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि गांव की सड़क, विद्यालय, तालाब, कुआं, आंगनवाड़ी, सामुदायिक भवन और अन्य सार्वजनिक संसाधन किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, ये पूरे समुदाय की साझा संपत्ति है। लेकिन कई बार हम सार्वजनिक चीजों को अपना समझकर उनकी देखभाल नहीं करते हैं। दीवारों को गंदा करते हैं, नलों को खुला छोड़ देना, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालना या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना समाज के विकास को कमजोर करता है। श्रोता, जिम्मेदार नागरिक ये समझता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना अपने ही संसाधनों की रक्षा करना है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे जीवन में पानी का महत्व किसी से छिपा नहीं है अंजलि। फिर भी कई बार हम पानी को आसानी से उपलब्ध संसाधन समझकर उसका अनावश्यक उपयोग करते रहते हैं। श्रोता, जिम्मेदार नागरिक पानी की हर बूंद का महत्व समझता है, वो घर में पानी की बर्बादी रोकता है, वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देता है और समुदाय को जल स्रोतों की रक्षा के लिए प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल,
1: तालाब, कुएं और पारंपरिक जल स्रोत केवल पानी के साधन नहीं है बल्कि गांव की प्राकृतिक संपदा है। उनकी देखभाल करना आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे कहना चाहेंगे कि पानी बचाना केवल पर्यावरण की सेवा नहीं है श्रोताओं, बल्कि स्वराज की नींव को मजबूत करना है।
0: बिल्कुल जागृति जी, यही बात आती है स्वच्छता से स्वस्थ समाज की।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, स्वच्छता किसी एक दिन का अभियान नहीं बल्कि जीवन शैली है। जब हम अपने घर को साफ रखते हैं तो हमें अपने मोहल्ले और गांव को भी साफ रखने की जिम्मेदारी समझनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: कचरा निर्धारित स्थान पर डालना, गीले और सूखे कचरे को अलग करना, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाना और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना जिम्मेदार नागरिक के व्यवहार की पहचान है। एक साफ सुथरा गांव न केवल सुंदर दिखाई देता है बल्कि स्वास्थ्य, सम्मान और आत्मविश्वास का वातावरण भी बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि आज पर्यावरण संरक्षण केवल विशेषज्ञों का विषय नहीं है, इसका संबंध हर व्यक्ति के जीवन से है। पेड़ हमारे जीवन का आधार है, इसलिए पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं, उसकी देखभाल करना भी जरूरी है। पानी, मिट्टी और जीव विविधता की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जागृति जी, एक जिम्मेदार नागरिक प्रकृति को केवल संसाधन नहीं मानता बल्कि जीवन का साथी समझता है।
1: जी हाँ।
0: यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी होंगी, इसलिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को अंजलि हम कहना चाहेंगे कि युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को ये बातें बताते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारे युवाओं के पास ऊर्जा है, नए विचार है और बदलाव लाने का उत्साह भी है। युवा गांव में शिक्षा, तकनीक, खेल, पर्यावरण, रोजगार और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, आपको कहना चाहेंगे कि आज मोबाइल और इंटरनेट ने जानकारी तक पहुंच आसान बना दी है, लेकिन तकनीक का सही उपयोग भी जिम्मेदार नागरिकता का हिस्सा है। गलत जानकारी फैलाने के बजाय सही जानकारी साझा करना, अफवाहों से बचना और डिजिटल माध्यमों का सकारात्मक उपयोग करना भी बहुत जरूरी है। अगर अंजलि ये युवा संकल्प ले लें कि वे अपने गाँव के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे तो स्वराज की यात्रा को नई गति मिल सकती है।
0: बिल्कुल, यही जागृति जी, इसमें महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो श्रोता साथियों, किसी भी समाज का वास्तविक विकास तब संभव है जब महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। महिलाएं परिवार, कृषि, पशुपालन, जल प्रबंधन, शिक्षा और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसकी आवाज को निर्णय प्रक्रिया में स्थान देना केवल समानता का विषय नहीं बल्कि बेहतर विकास की आवश्यकता है। जब महिलाएं ग्राम सभा और स्थानीय निर्णयों में सक्रिय भागीदारी करती है तो विकास की प्राथमिकताएं अधिक व्यापक और समाज की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप बन सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि जिम्मेदार नागरिकता का एक महत्वपूर्ण आधार ईमानदारी है। यदि हम समाज में पारदर्शिता चाहते हैं तो हमें स्वयं भी ईमानदार व्यवहार अपनाना होगा।
0: बिल्कुल,
1: गलत को देखकर चुप रहना हमेशा सही नहीं होता दोस्तों। अपनी बात सम्मान पूर्वक रखना, सही जानकारी प्राप्त करना और गलत सूचना या अफवाह को आगे न बढ़ना जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। एक जागरूक नागरिक सवाल पूछता है लेकिन सवाल के साथ साथ समाधान में भी सहयोग करता है।
0: बिल्कुल,
1: स्वराज की भावना हमें व्यक्तिगत सोच से सामूहिक सोच की ओर ले जाती है अंजलि। जब हमारी सोच केवल ये रहती है कि मेरे घर में पानी आ जाए तो जिम्मेदारी सीमित रहती है, लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमारे पूरे गांव में पानी सुरक्षित रहे तब हमारी सोच स्वराज की दिशा में आगे बढ़ती है। श्रोताओं,
0: बिल्कुल,
1: मेरा परिवार से मेरा गांव, मेरे गांव से मेरा समाज और मेरा समाज से मेरा देश, यही जिम्मेदार नागरिक की सोच का विस्तार है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि समाज में बदलाव लाने के लिए बहुत बड़ा पद, बहुत पैसा और बहुत प्रभावी होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति पानी बचाता है तो दूसरा पेड़ लगा सकता है।

0: तीसरा व्यक्ति बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है तो चौथा स्वच्छता की पहल कर सकता है, पांचवा ग्राम सभा में सक्रिय भागीदारी कर सकता है। तो जब ये छोटे छोटे प्रयास एक साथ जुड़ते हैं तो बड़ा परिवर्तन जन्म लेता है। इसलिए हमें बदलाव के लिए किसी और का इंतजार नहीं करना चाहिए, शुरुआत हम से ही होनी चाहिए।
1: जी हाँ, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें की, अंत में छोटी मोटी बातें रहेगी वो जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में, और हमारी बातें चल रही थी स्वराज की पहली सीढ़ी जिम्मेदार नागरिक को लेकर। मैं आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमें समझना बहुत जरूरी है कि स्वराज किसी एक व्यक्ति, संस्था या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। स्वराज हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदार नागरिक अपने अधिकारों को जानता है, अपने कर्तव्यों को निभाता है, समाज की समस्याओं को अपनी समस्या समझता है और समाधान का हिस्सा बनता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा गांव आत्मनिर्भर बने, हमारा समाज मजबूत बने और हमारा देश आगे बढ़े, तो हमें सबसे पहले अपने भीतर जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी होगी। हमें ये अपने मन में दृढ़ संकल्प लेना होगा कि मैं पानी की हर बूंद को बचाऊंगी, मैं स्वच्छता का ध्यान रखूं, मैं प्रकृति की रक्षा करूं, मैं सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर उसकी देखभाल करूं, मैं ग्राम सभा और सामुदायिक निर्णयों में भाग लूं, मैं सही जानकारी को बढ़ावा दूं और अफवाहों से बचूं, मैं अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को भी निभाऊं। क्योंकि जब एक नागरिक बदलता है अंजलि, तो एक परिवार बदलता है। जब परिवार बदलते हैं तो समाज बदलता है, और जब समाज जिम्मेदार बनता है तब स्वराज मजबूत होता है।
1: बिल्कुल। इसलिए श्रोता साथियों, याद रखिए कि स्वराज बाहर से मिलने वाली व्यवस्था नहीं, भीतर से पैदा होने वाली जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ।
1: और इसी जिम्मेदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है। स्वराज की पहली सीढ़ी जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार नागरिक की पहली पहचान कर्तव्य के प्रति ईमानदारी, और मजबूत समाज की पहली जरूरत मैं नहीं हम की सोच है।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें की, आप देख पा रहे हैं कि समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का, पर जाते जाते आपको हमारा पता बताना चाहेंगे, ताकि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
5: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
4: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
5: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी बातचीत का विषय है मोबाइल और ईयरफोन का इस्तेमाल, कानों की सेहत का हम कैसे ख्याल रखें। श्रोता साथियों, मोबाइल ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है। फोन पर हम परिवार और दोस्तों से बातचीत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेती बाड़ी और मौसम की जानकारी लेते हैं।
4: जी हाँ।
5: मनोरंजन करते हैं और जरूरी काम भी निपटाते हैं, लेकिन सुविधा के साथ सावधानी भी जरूरी है। श्रोता

0: हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि लंबे समय तक ईयरफोन लगाने के बाद कान में आवाज गूंजती है, कान बंद से लगते हैं, घंटी या सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है, या फिर सामान्य आवाज समझने के लिए मोबाइल या टीवी की आवाज बढ़ानी पड़ती है?
1: बिल्कुल।
0: अगर ऐसा होता है तो हमें अपने कानों के प्रति थोड़ा और सावधान हो जाने की जरूरत है। तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि मोबाइल और ईयरफोन का इस्तेमाल हम सीमित तरीके से कैसे करें और कानों की सेहत का ध्यान कैसे रखें।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इन सभी बातों को कार्यक्रम के माध्यम से हम जरूर जानेंगे, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल और ईयरफोन का इस्तेमाल कानों की सेहत को कैसे बचाएं। अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। सुबह आँख खुलने से लेकर श्रोता साथियों सोने तक मोबाइल हमारे साथ चलता रहता है। पढ़ाई हो, काम हो, मनोरंजन हो, किसी से बात करनी हो या कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, श्रोता साथियों मोबाइल हमारे बहुत से काम आसान कर देता है। मोबाइल के साथ ईयरफोन और हेडफोन का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है। लोग गाने सुनने, वीडियो देखने, ऑनलाइन पढ़ाई करने, गेम खेलने और फोन पर बातचीत करने के लिए श्रोता साथियों हम देखते हैं कि ईयरफोन का ही इस्तेमाल करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि ईयरफोन अपने आप में श्रोता साथियों कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि समस्या तब शुरू होती है जब हम इसे बहुत तेज आवाज में बहुत लंबे समय तक सुनते हैं। अंजलि जी, हम देखते हैं कि जब हम इसे बहुत तेज आवाज में बहुत लंबे समय तक या श्रोता साथियों बिना किसी आराम के इस्तेमाल करते हैं, तो हम देखते हैं कि तेज आवाज लगातार कानों तक पहुंचने और सुनने की क्षमता है वो कमजोर पड़ सकती है। कई बार श्रोता साथियों व्यक्ति को शुरुआत में इसका पता नहीं चलता है, धीरे धीरे हम देखते हैं कि कानों में आवाज गूंजना, कान बंद लगना, सुनने में परेशानी होना, ये सारी समस्याएं वो हमें दिखाई देने लगती हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही बात करें तो तेज आवाज कानों के लिए क्यों नुकसानदायक हो सकती है? तो श्रोता साथियों, हमारे कान बहुत संवेदनशील अंग है। कान के अंदर मौजूद छोटी छोटी संवेदनशील कोशिकाएं हमें आवाज सुनने में भी मदद करती हैं। बहुत तेज आवाज, लंबे समय तक तेज आवाज सुनने से इन पर दबाव पड़ सकता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि ईयरफोन लगाकर जब आवाज सीधे कान के पास पहुंचती है तो तेज आवाज का प्रभाव अधिक महसूस हो सकता है, खासकर तब जब कोई व्यक्ति कई घंटे लगातार ईयरफोन लगा कर रखता है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए केवल यह सोचना पर्याप्त नहीं है कि आवाज तो मुझे अच्छी लग रही है, इसलिए इसका नुकसान नहीं होगा। कानों को नुकसान कई बार धीरे धीरे होता है और शुरुआत में जैसा कि मनीषा आपने बताया कि इसका पता भी हमें नहीं चलता। इसी के साथ अब बात करें कि ईयरफोन इस्तेमाल करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात, आवाज कम रखें। मोबाइल में गाना, वीडियो या बातचीत सुनते समय आवाज को इतना तेज न करें कि आसपास के सामान्य आवाज बिल्कुल सुनाई न दे। अगर आपके पास कोई व्यक्ति सामान्य आवाज में बात कर रहा है और ईयरफोन लगाने के कारण आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो यह संकेत है कि आवाज बहुत ज्यादा हो सकती है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए दोस्तों, लंबे समय तक लगातार ईयरफोन न लगाएं। ईयरफोन लगाकर घंटों तक गाने सुनना, वीडियो देखना अच्छी आदत नहीं है। बीच बीच में कानों को आराम देना भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि आप लंबे समय तक वीडियो सुन रहे हैं तो बीच में ईयरफोन निकालकर कुछ समय कानों को आप आराम दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर बात करें कि लगातार ईयरफोन लगाना क्यों सही नहीं है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि कई लोग ईयरफोन लगाकर घंटों तक गाने सुनते हैं और वीडियो देखते हैं। कानों को भी श्रोता साथियों आराम की जरूरत होती है, इसीलिए श्रोता साथियों लगातार लंबे समय तक ईयरफोन लगाने से हमें बचना है। यदि श्रोता साथियों पढ़ाई या काम के कारण ईयरफोन लगाना हमारे लिए जरूरी है, तो हमें बीच बीच में उसे हटाकर अपने कानों को आराम भी देना है। इससे श्रोता साथियों हम देखते हैं कि हमारे कान ही वो ठीक तरीके से काम करते हैं। अगर हम लगातार ईयरफोन लगाकर रखते हैं तो इससे हम देखते हैं कि कान में दर्द, भारीपन, आवाज गूंजना जैसी समस्या है वो हमें दिखाई दे सकती है। इसलिए श्रोता साथियों ईयरफोन का इस्तेमाल है वो हमें सीमित करना है।
1: जी बिल्कुल मनीषा, यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि सोते समय ईयरफोन लगाने से हमें बचने की जरूरत है। कई लोगों की आदत होती है कि वो रात में मोबाइल पर गाने या वीडियो चलाकर ईयरफोन लगाकर सो जाते हैं। श्रोता साथियों, यह आदत कानों के लिए परेशानी पैदा कर सकती है और नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए कोशिश करें कि सोने से पहले ईयरफोन निकाल दें। इसी के साथ ईयरफोन को बार बार अलग अलग लोगों के साथ साझा करने से बचे। ईयरफोन के कान में जाने वाले हिस्से को साफ करना भी जरूरी है। गंदे ईयरफोन से कान में संक्रमण या जलन जैसी समस्याएं हो सकती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि कई बार कान में दर्द और आवाज आने जैसी चीजें हमें सुनाई देती है, तो हमें सावधान हो जाना है। यदि ईयरफोन इस्तेमाल करने के बाद कान में दर्द, भारीपन, सुनाई कम देना, लगातार घंटी, सीटी जैसी आवाज महसूस हो, तो सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें। ऐसी समस्या बार बार हो रही है या बनी रहे तो कान, नाक, गला विशेषज्ञ जो होते हैं उनके डॉक्टर से हमें सलाह लेनी चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगी, लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा बागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने मनीषा ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि मोबाइल का इस्तेमाल भी समझदारी से करें। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ ईयरफोन ही नहीं, मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल भी हमारी दिनचर्या पर असर डाल सकता है। मोबाइल को कान से लगाकर बहुत लंबे समय तक बातचीत करने के बजाय जरूरी होने पर स्पीकर मोड या कह सकते हैं कि हैंड्स फ्री विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन स्पीकर का इस्तेमाल करते समय भी आवाज बहुत तेज न रखें। बच्चों के मामले में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। मोबाइल और ईयरफोन लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल करने देने के बजाय पढ़ाई, खेल, बातचीत और दूसरी गतिविधियों के लिए समय देना चाहिए। परिवार के बड़े सदस्य बच्चों को केवल मनीषा यह न कहें कि मोबाइल मत चलाओ, बल्कि उन्हें समझाएं कि मोबाइल का इस्तेमाल कैसे सुरक्षित तरीके से करना है। बच्चे अगर मोबाइल पर वीडियो देखते हैं तो उनकी आवाज बहुत तेज न हो। ईयरफोन के इस्तेमाल की जरूरत हो तो आवाज कम रखने और बीच बीच में ब्रेक लेने की आदत डालें। माता पिता खुद भी उदाहरण बने। अगर बड़े लोग दिन भर ईयरफोन लगा कर रखेंगे तो बच्चों को सुरक्षित इस्तेमाल समझाना मुश्किल होगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि कान केवल ईयरफोन की आवाज से ही प्रभावित नहीं होते हैं साथियों, आसपास का वातावरण भी श्रोता साथियों इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम देखते हैं कि मशीनों, लाउड स्पीकर, पटाखों, तेज संगीत, बहुत शोर वाली जगहों पर श्रोता साथियों लंबे समय तक रहना हमारे कान के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। अगर काम, किसी जरूरी परिस्थिति के कारण लंबे समय तक तेज आवाज वाले वातावरण में रहना पड़े तो श्रोता साथियों उचित कान सुरक्षा उपकरण का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यही अगर बात करें कि पढ़ाई के दौरान ईयरफोन का इस्तेमाल हमें कैसे करना है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि आज ऑनलाइन पढ़ाई के कारण विद्यार्थियों को मोबाइल, कंप्यूटर और ईयरफोन का इस्तेमाल है वो बढ़ता जा रहा है। पढ़ाई के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल किया जाए श्रोता साथियों, लेकिन आवाज ही उसका स्तर हमें श्रोता साथियों सामान्य रखना है और लंबे समय तक ईयरफोन को हमारे कानों में नहीं लगा के रखना है। बीच बीच में पढ़ाई करते समय या आप गाने सुन रहे हैं या कोई अन्य कार्य श्रोता साथियों आप कर रहे हैं तो बीच बीच में हमें उन ईयरफोन को हटाकर अपने कानों को आराम देना भी है।
0: बिल्कुल मनीषा, यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग खेतों में काम करते समय मोबाइल पर गाने या रेडियो कार्यक्रम सुनने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खेत, सड़क या बाजार जैसे स्थानों पर दोनों कानों में ईयरफोन लगाकर आसपास की आवाज से पूरी तरह कट जाना सुरक्षित नहीं है। कहीं वाहन आ रहा हो, कोई व्यक्ति आवाज दे रहा हो या आसपास कोई खतरा हो तो उसकी आवाज सुनाई न देना दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, सड़क पर चलते समय, वाहन चलाते समय या मशीन के आसपास काम करते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कम करने की जरूरत होती है। अगर आपको इनमें से कोई समस्या श्रोता साथियों बार बार हो रही है, जैसे कि कान में घंटी या सीटी जैसी आवाज आना, सामान्य आवाज सुनने में परेशानी होना, कान में दर्द या भारीपन महसूस होना, बातचीत समझाने में बार बार दिक्कत होना, टीवी या मोबाइल की आवाज लगातार बहुत तेज रखना, ईयरफोन हटाने के बाद भी आवाज गूंजना, तो अपनी सुनने की क्षमता की जांच करवाने के लिए आप स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं ताकि आपका जो इलाज है वो समय पर हो जाए और कानों से जुड़ी जो समस्या आपको दिखाई दे रही है उससे आप बच पाए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि कान हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है। इसकी मदद से श्रोता साथियों हम दुनिया की आवाजों को महसूस करते हैं, अपने प्रियजनों की बातें सुनते हैं, संगीत का आनंद लेते हैं और आसपास होने वाली घटनाओं को समझते हैं। हम देखते हैं कि आज मोबाइल और ईयरफोन ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से श्रोता साथियों हमारे कानों पर अनावश्यक दबाव है वो बढ़ सकता है। बहुत तेज आवाज, लंबे समय तक लगातार ईयरफोन लगा कर रखना या ज्यादा इस्तेमाल करना, ईयरफोन लगातार लगाकर सोना और साथ ही श्रोता साथियों कान में वस्तु डालकर सफाई करना जैसी आदतें हैं उनसे हमें बचना है। साथ ही साथियों हम कहना चाहेंगे कि आवाज धीमी रखें, इस्तेमाल सीमित रखें और अपने कानों को समय समय पर आराम दें।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि मोबाइल हमारी जरूरत है, लेकिन हमारी सुनने की क्षमता उससे भी ज्यादा जरूरी है। मोबाइल और ईयरफोन पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है, जरूरत है सही तरीके से सीमित समय के साथ इस्तेमाल करने की। याद रखिए कि कम आवाज, कम समय और बीच बीच में

0: आराम कानों की सेहत के लिए जरूरी है। अपने कानों को आराम दीजिए, तेज आवाज को बचाइए और बच्चों को भी सुरक्षित आदतें सिखाइए। मोबाइल का सही इस्तेमाल अपनाएंगे, कानों की सेहत को सुरक्षित बनाएंगे, क्योंकि तेज आवाज से दूरी रखना ही हमारे कानों की सुरक्षा का सबसे बड़ा रहस्य है।
1: जी हाँ
0: श्रोता साथियों, आज एक छोटा सा संकल्प आप सभी लें कि मोबाइल और ईयरफोन का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार करेंगे। आवाज को आवश्यकता के रूप से तेज नहीं करेंगे, लगातार लंबे समय तक ईयरफोन नहीं लगाएंगे और कानों में किसी तरह की परेशानी होने पर उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि सुनने की क्षमता एक अनमोल उपहार है, उसकी सुरक्षा आज की सावधानी से ही संभव हो पाएगी।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा आज के कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारी इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को। नमस्कार।
2: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमरवावरा मर हित्ता भाई बुन ने आपनी बुन मनीषा
1: ने आपनी बुन अंजलि नु
2: राम राम
0: होवे भाई बुनो आप सब हमली रिया हो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहा हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में
1: होवे भाई बुनो लेने हाजिर थे गयो हो कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक नया विषय ने हाथी मनीषा बुन आज अपने कार्यक्रम में भाई बुनो तक की बातचीत नु विषय है कि गांव में पहले आपड़ा देखता था कि चौपाल लगती हती आज चौपाले हती ई आपड़े ज्ञान नु अनुभव सब युवा साथे तक साझा करता था ने घणा काकानी जे चीजे हे ई असल थाती हती पण अवड़ेना टाइम में आपड़े देखी रहो कि गांव नी जे चौपाल है इनी संस्कृति धीरे धीरे खत्म थाती सही रही है ता समस्या केम वधी रही है आना हूँ कारण है इने माते आपड़ा ने ध्यान आलवानी जरूरत है बाइन मुनो आपे कारे गौर करू है कि जई चौपाल माते कारे क्षामे हित मन का बेई ने एका बीजा ते की वाते करता हता ए आसे सन्नाटो थे गयो है आखिर आवो केम थई रू है आजकल आपड़े देखो हो कि आ सब चीजे नती थई रही तो आनु प्रभाव आपड़े गांव ने समाज माते केवू पड़ी रू है ने आज परंपरा है इने जीवित राखवो आपड़े बल्ले केम जरूरी है आ हंगरी वाते आज आपड़े कार्यक्रम ने माध्यम ते की सणवा वारा हो
0: હવે અંજલિ બોન વાતે તે આપણ કરંગા કાર્યક્રમ ને માધ્યમ કેતી પણ આપ બરહામળા આગીત ને મોરે કર આપડી વાતે
1: હવે તો ભાઈન બોનો આપ હંબર તરેસુ આપડો રેડિયો આપડી વાતે વાગડ રેડિયો 90.8 FM માતે

0: कर देगा तो आप देखेंगा कि अपनी जो चौपाले हैं ये फिर तक जी भी थागा ने अपना जो संस्कार ने संस्कृति बनी तकी है ये बनी तकी रहेगा।
1: होवे अंजलि बोन तो कार्यक्रम के माध्यम पर कहव चाहूंगा कि आ चौपाल है वे अपने जीवन में घणो महत्वपूर्ण है। एंड खते अपन देखा हाँ कि आप एक बीजा खाते मल हाँ अपनी बातें साझा कर हाँ अपनी समस्याएं बताड़ हाँ तो जेन खते अपन देखा हाँ कि आप तनाव है वो भी कम थी जाए अपने मानसिक स्वास्थ्य है वो भी अच्छू बनियो खतु रहे तो भाई बहनों कहूं चाहूंगा कि आप एक बीजा खाते मलव है बातें करवी है अपनी हती समस्या है भी साझा करवी है अगर आप सही रहू है तो भाई बहनों चौपाल केवल बेवानी जगह नहीं है बल्कि आ एक अपने गामनी आत्मा है। तो भाई बहनों याद रखो कि जी चौपाल जीवित रहेगा वहाँ संवाद जीवित रहेगा ने जहाँ संवाद जीवित रहेगा अंजलि बोन वो समाज मजबूत बनेगा।
0: हवे मनीषा बोन गांव नी चौपाल नी संस्कृति खत्म थावो केवल एक परंपरा नो समाप्त थावो नथी बल्कि सामाजिक जुड़ाव संवाद ने सामूहिक सोच नो कमजोर थावो भी है। अगर ग्राम चौपाल ने फिर तक जीवित राखवानो आपणे प्रयास करूंगा तो आपणे युवा ने जे गढ़लो मन कहे ए हाथे आवेगा ने गांव नी समस्या नो मलीने समाधान करी पांगा। चौपाल जे है ये गांव ना विकास ने सामाजिक एकता नु केंद्र मान्यो जाय है एटले चौपाल ने फिर तक जीवित बनावू है क्योंकि मजबूत चौपालस मजबूत गांव ने मजबूत समाज नी पहचान है।
1: હવે અંજલિ બોન તો કાર્યક્રમ ને માધ્યમ કરતી આપણે ભાઈ બોનો કરતી આપણે ગામ ની ચોપાલ ની સંસ્કૃતિ ને આપણે હેતી જીવિત રાખવું હે આના માટે ઘણા કાની વાતે થઈ ગઈ હે। હવે દેખી રહી હે કે ટાઈમ ભી થઈ ગયો હે આપણે કાર્યક્રમ કરતી સૂટ પડવાનું સૂટતે પડે પણ જાતે કરતી પેલ આપણે કાર્યક્રમ નો પતો આપણે ભાઈ બોનો ને બતાડી દો।
0: હવે ભાઈ બોનો લખી લો અમારું પતુ હે કાર્યક્રમ સમસ્યા સમાધાન વાગડ રેડિયો 90.8 FM મુકામ પોસ્ટ કુપડા વાગથરા કેમ્પસ બાંસવાડા રાજસ્થાન। અમારું પિનકોડ નંબર હે 3200001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते अमारो फोन नंबर है 9460051234।
1: तो भाई बहनों फेरे मलंगा अणास कार्यक्रम में अणास टेम माते एक नवा विषय ने हाते तार हुदी
2: राम राम राम राम, राम।

0: कार्यक्रम हमारी बात आप
1: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
2: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
1: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर।
1: जी हाँ,
2: हम देखते हैं कि सितंबर का महीना हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन की नींव केवल बीमारी से बचने में नहीं बल्कि सही और संतुलित भोजन लेने में भी है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान लोगों को संतुलित आहार, पोषण, स्वच्छता, बच्चों की देखभाल और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक किया जाता है।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन सवाल यह है कि क्या पोषण का मतलब केवल पेट भरना है?

0: क्या महंगा भोजन ही पौष्टिक भोजन होता है? क्या हमारे गांव और घरों में उपलब्ध स्थानीय खाद्य पदार्थों से भी पूरा पोषण पाया जा सकता है? इस कार्यक्रम में आज हम इन्हीं सवालों के जवाब को समझेंगे।
1: बिल्कुल,
0: ढेर सारी बातें कार्यक्रम के माध्यम से रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम हमारे साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तभी हम अपने जीवन के रोज के कार्य है वो अच्छी तरह से कर पाते हैं, पढ़ाई कर पाते हैं, मेहनत कर पाते हैं और अपने परिवार तथा समाज के लिए बेहतर योगदान दे पाते हैं। श्रोता साथियों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए केवल बीमारियों से दूर रहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शरीर को सही मात्रा में पोषक तत्व मिलना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर को ऊर्जा, विकास, रोगों से लड़ने की क्षमता और मानसिक सक्रियता के लिए अंजलि जी हम देखते हैं कि अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन्हीं पोषक तत्वों की पूर्ति हमारे भोजन से होती है। साथियों, इसी महत्व को समझने और पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से श्रोता साथियों हर वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। यह माह लोगों को यह समझने का अवसर देता है कि अच्छा भोजन केवल पेट भरने के लिए ही नहीं बल्कि शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए भी जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि भोजन जो है वो हमारे शरीर के लिए ईंधन की तरह है। जैसे वाहन चलाने के लिए सही ईंधन चाहिए होता है, वैसे ही हमारे शरीर को काम करने, बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ, फाइबर और पानी जैसे जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए। लेकिन अक्सर हम भोजन को केवल स्वाद और पेट भरने के नजरिए से देखते हैं। अगर थाली में केवल चावल या रोटी है तो पेट तो भर सकता है लेकिन शरीर को हर जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाता। इसलिए जरूरी है श्रोता साथियों कि हमारी थाली में विविधता हो। रोटी या चावल के साथ दाल, चना, मूंग, सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, मौसमी फल और उचित मात्रा में तेल और अन्य वसा भी शामिल होने चाहिए। हमारे गाँव में तो ऐसी कई स्थानीय खाद्य पदार्थ मौजूद हैं जो पोषण के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। जैसे कि बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, दालें, चना, मूंगफली, तेल, हरी सब्जियां, मौसमी फल और स्थानीय अनाज। इसलिए पौष्टिक भोजन के लिए हमेशा महंगे बाजारों खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है।
0: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत महत्वपूर्ण संदेश के साथ होती है। सही पोषण स्वस्थ जीवन की नींव होती है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि हमें अपने जीवन में केवल स्वाद का ही ध्यान रखना नहीं चाहिए बल्कि सही पोषण का भी ध्यान रखना हमारे लिए श्रोता साथियों उतना ही जरूरी है। हम देखते हैं कि आज के समय में एक और कुपोषण की और समस्या है वो मौजूद है साथियों। वहीं दूसरी ओर श्रोता साथियों, गलत खान पान के कारण मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप और अन्य जीवन शैली से जुड़ी जो समस्या है वो भी बढ़ती जा रही है। इसलिए श्रोता साथियों, संतुलित और पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक होना हमारे लिए पहले से भी इस टाइम पे अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि किसी भी परिवार के स्वास्थ्य की शुरुआत उसकी रसोई से होती है। हम क्या खरीदते हैं, कैसे पकाते हैं और किसे कितना खिलाते हैं, इन सभी बातों का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। परिवार में सबसे पहले पुरुषों और बच्चों को भोजन परोसा जाता है और महिलाएं आखिर में बचा हुआ खाना खाती हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, हमें इस सोच को बदलना होगा। महिला भी परिवार का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर माँ या घर की महिला स्वयं कमजोर और कुपोषित होगी तो उसका असर उसके स्वास्थ्य, काम करने की क्षमता और परिवार की देखभाल पर भी पड़ेगा।
0: जी हाँ,
1: इसलिए घर में भोजन बांटते समय महिलाओं और किशोरियों को पोषण का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि राष्ट्रीय पोषण माह मनुष्य को, मतलब जो लोग हैं उनको पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है और हम देखते हैं कि स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा दिया जाता है। इस दौरान लोगों को बताया जाता है कि शरीर में किन किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उन्हें भोजन में कैसे, भोजन से कैसे प्राप्त किया जा सकता है और गलत आदतें हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार नुकसानदायक हो सकती है। साथियों, हम देखते हैं कि पोषण माह केवल एक माह तक मनाया जाने वाला कार्यक्रम नहीं है। इसका उद्देश्य ऐसी आदतों को विकसित करना है साथियों, जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाएं। साथियों, कहना चाहेंगे कि यदि हम केवल पोषण माह के दौरान पौष्टिक भोजन करें और बाकी दिनों में अगर हम खान पान का ध्यान न रखें और नजरअंदाज कर दें तो अंजलि जी, हम देखते हैं कि इसका लाभ हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छी बातें चल रही है, आगे भी ये बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से पोषण की शुरुआत जो है वो हमारे घर से ही होती है और पोषण आखिरकार है क्या, यही बात आती है बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान की। जी हाँ श्रोता साथियों, बच्चे हमारे भविष्य हैं, उनके शरीर और मस्तिष्क का विकास बचपन में तेजी से होता है, इसलिए उस उम्र में पोषण की जो कमी है वो आगे चलकर कई समस्याओं का कारण बन सकती है। छोटे बच्चों के लिए उम्र के अनुसार उचित आहार बहुत जरूरी है। शिशु के लिए शुरुआती महीनों में माँ का दूध सबसे महत्वपूर्ण आहार है। इसके बाद उम्र के अनुसार पूरक आहार शुरू किया जाता है। बच्चे को केवल चाय, बिस्किट, नमकीन या मीठे पैकेट वाले खाद्य पदार्थ देकर

0: उसका पेट भर देना पर्याप्त नहीं है। बच्चे को घर के बने अलग अलग भोजन की आदत डालें, दाल की खिचड़ी, दलिया, सब्जी वाला भोजन, दाल, चना, मूंग, अंडा, जहाँ परिवार लेता हो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। इसी के साथ दूध, दही, मौसमी फल, उम्र और स्थानीय उपलब्धता के अनुसार दिए जाने वाले जो चीजें हैं वो हम उन्हें दे सकते हैं। सबसे जरूरी बात है श्रोता साथियों कि बच्चों को जबरदस्ती खिलाने के बजाय प्यार और धैर्य से खिलाएं, क्योंकि अगर हम बच्चों को जबरदस्ती खिलाते तो देखते हैं कि बहुत सी बार बच्चे उल्टी कर देते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही बात करें कि पोषण क्या है इसकी। तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि पोषण का अर्थ भोजन के माध्यम से शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों का प्राप्त होना है। हमारे शरीर को अलग अलग कामों के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। भोजन में श्रोता साथियों मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ, फाइबर, पानी जैसे तत्व है वो महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें से श्रोता साथियों प्रत्येक पोषक तत्व का अपना एक अलग काम होता है। हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और इन सब में पाए जाते हैं। यही अगर प्रोटीन की बात करें तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि प्रोटीन शरीर के विकास और उत्तकों की मरम्मत के लिए मदद करता है। यह श्रोता साथियों पाया जाता है दालों में, चना में, सोयाबीन में, दूध में, दही में, पनीर में, अंडे में, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही बात करें किशोरियों का पोषण क्यों जरूरी है, तो श्रोता साथियों हमारे समाज में किशोरियों के पोषण पर अक्सर उतना ही ध्यान नहीं दिया जाता जितना बच्चों पर दिया जाता है। लेकिन किशोरावस्था शरीर के विकास का महत्वपूर्ण समय है। इस उम्र में लड़कियों को पर्याप्त और अलग अलग भोजन मिलना चाहिए। इसके भोजन में हम कह सकते हैं कि हमें आयरन और अन्य पोषक तत्वों के स्रोत भी शामिल करने चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, चना, गुड़, तेल, बाजरा जैसे स्थानीय खाद्य पदार्थ भोजन का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। इसी के साथ सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से किशोरियों के लिए उपलब्ध पोषण और स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं की जानकारी भी परिवार को लेनी चाहिए। हम देखते हैं कि अभी के समय में स्कूलों में आयरन युक्त गोलियां बच्चों को दी जाती हैं ताकि जो लड़कियां हैं उनमें आयरन की कमी न हो। श्रोता साथियों गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर को अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। इस समय महिला को पर्याप्त भोजन, अलग अलग आहार, आराम और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को केवल यह कहकर कम खाना नहीं खाना चाहिए कि बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे गलती जो धारणा है कि खाना खाने से बच्चा जो है वो पेट में उसका वजन बढ़ जाएगा, ऐसा हमें नहीं सोचना है। ये गलत धारणाएं होती है। महिलाओं को पर्याप्त पोषण लेते रहने की जरूरत है। सही पोषण से माँ और बच्चे दोनों स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह प्रसव के बाद भी महिला के भोजन पर ध्यान देना जरूरी है, खासकर जब वह स्तनपान करा रही हो। परिवार को महिलाओं को पोषण देने और साथ साथ पर्याप्त आराम और भावनात्मक सहयोग करने की भी जरूरत है। अगर इस समय उसे किसी भी प्रकार का आराम और भावनात्मक सहयोग नहीं मिलता है तो उस महिला का जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित हो सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि विटामिन और खनिज पदार्थ शरीर के सामान्य कामकाज के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हरी सब्जियां, फल, दूध, दालें, मेवे और बीज इनके अच्छे स्रोत हो सकते हैं। फाइबर श्रोता साथियों हम देखते हैं कि पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए हम साबुत अनाज, फल, सब्जियां, दालें और सलाद जैसे फल ही उनको ले सकते हैं, क्योंकि श्रोता साथियों इनमें फाइबर है वो ज्यादातर होता है। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि पानी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर के तापमान को सामान्य रखने और शरीर के कामों के लिए पानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए श्रोता साथियों केवल एक ही प्रकार का भोजन करना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारे शरीर को अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो उसी के अनुसार हमें अपने थाली में विविधता रखनी है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही बात करें तो श्रोता साथियों यह एक बहुत सामान्य धारणा है कि पौष्टिक भोजन मतलब महंगे फल, ड्राई फ्रूट और महंगे खाद्य पदार्थ, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। हमारे आसपास मौजूद कई सस्ते और स्थानीय खाद्य पदार्थ भी पोषण से भरपूर हो सकते हैं, जैसे कि चना, मूंग, मसूर, अरहर, मूंगफली, तिल, बाजरा, मक्का, ज्वार, हरी पत्तेदार सब्जियां और मौसमी फल इसके उदाहरण है। है, इसलिए पोषण का पहला मंत्र है महंगा नहीं संतुलित भोजन जरूरी है। इसी के साथ थाली को विविधतापूर्ण बनाना क्यों जरूरी है इसको लेकर बात करें। तो श्रोता साथियों, कल्पना कीजिए कि रोज आपकी थाली में सिर्फ एक ही चीज हो, क्या शरीर की सभी जरूरतें पूरी हो सकती है? नहीं। इसलिए भोजन में विविधता होना जरूरी है। एक सामान्य संतुलित थाली में स्थानीय उपलब्धता और व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार अनाज, दाल और अन्य प्रोटीन स्रोत, सब्जियां, फल, दूध, दही जैसे खाद्य पदार्थ और उचित मात्रा में वसा शामिल की जा सकती है। साथ ही पर्याप्त पानी पीना, फाइबर वाले खाद्य पदार्थ लेना भी हमारे लिए जरूरी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि संतुलित आहार श्रोता साथियों वह भोजन होता है जिससे हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न पोषक तत्व उचित मात्रा में और विविधता में शामिल होते हैं। इससे हम देखते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर के विकास में मदद करते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता है उसमें भी यह सहायता करते हैं। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमारे भोजन की थाली जितनी विविध होगी उसमें अलग अलग पोषक तत्व होंगे उतनी ही हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो हमारी मजबूत होगी।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं। ये बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे पोषण माह को लेकर, और कार्यक्रम के माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना था। हमने जाना था कि हमारे शरीर में पोषण की जरूरत क्यों होती है और क्या क्या पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। यहीं अगर बात करें अंजलि जी, कुपोषण क्या है उसकी, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि जब शरीर में आवश्यक पोषक तत्व है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं और भोजन में पोषक तत्वों का संतुलन है वो सही नहीं होता है, तो इससे हम देखते हैं कि कुपोषण की स्थिति है वो पैदा हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: कुपोषण केवल श्रोता साथियों कम भोजन करने का या कम नाश्ता करने का नाम नहीं है। हम देखते हैं कि कई बार लोग अंजलि जी भोजन तो पूरी मात्रा में करते हैं पर उसमें श्रोता साथियों पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसमें आवश्यक पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कुपोषण है, कुपोषण की समस्या है वो बनने लगती है।
1: बिल्कुल मनीषा, केवल पौष्टिक भोजन खाना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भोजन गंदे हाथों से बनाया जाए, पानी दूषित हो या भोजन खुले में रखा जाए तो बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए भोजन बनाने से पहले और खाने से पहले हाथ धोना बहुत जरूरी है। सब्जियां और फलों को साफ पानी से धोकर इस्तेमाल करना चाहिए, पका हुआ भोजन ढककर रखना चाहिए, पीने के पानी को सुरक्षित रखना चाहिए, घर के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। याद रखिए कि स्वच्छता और पोषण साथ साथ चलें, तभी परिवार स्वस्थ रहेगा। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि कुपोषण केवल बहुत दुबले बच्चे का नाम नहीं है। जब शरीर को लंबे समय तक पर्याप्त और सही पोषण नहीं मिलता तो उसके विकास का असर उस पर पड़ता है। बच्चे की उम्र के अनुसार वजन, लंबाई नहीं बढ़ती है, कमजोर और बार बार बीमार पड़ता है और विकास में देरी भी हो जाती है। ऐसे संकेत जो हमें दिखाई दे तो हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल,
1: बच्चों की नियमित वृद्धि में निगरानी करवानी चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्र, आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग से मिलने वाली सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए। अगर बच्चे की विकास या पोषण को लेकर कोई चिंता हो तो स्वास्थ्य कर्मी से सलाह भी लेनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बच्चों में पोषण की कमी से शारीरिक और मानसिक विकास से वो प्रभावित हो सकता है। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बच्चों के भोजन का हमें विशेष ध्यान देना है।
1: बिल्कुल,
0: दूसरी ओर श्रोता साथियों, जरूरत से ज्यादा ऊर्जा देने वाला भोजन हो, अगर उसमें पोषक तत्वों की कमी हो तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए समस्या बन सकता है। बहुत अधिक मीठे पेय, अत्यधिक तला भुना भोजन और पैकेट वाले जो खाद्य पदार्थ खाने की आदत है श्रोता साथियों, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। इसलिए कहना चाहेंगे कि पोषक तत्व का अर्थ केवल ज्यादा खाना नहीं है, बल्कि सही मात्रा में सही पोषक तत्वों के साथ खाना है। यहीं अगर अंजलि जी बात करें कि बच्चों के लिए पोषण का क्यों महत्व है, तो साथियों हम देखते हैं कि बच्चे शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए पोषण की आवश्यकता है वो बहुत जरूरी होती है। बच्चे को भोजन में चाहिए श्रोता साथी, उनके लिए पर्याप्त ऊर्जा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए और खनिज पदार्थ ही वो सही मात्रा में अगर बच्चे को मिलते हैं तो अंजलि जी हम देखते हैं कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास है वो अच्छा होता है। साथ ही श्रोता साथियों, अगर हम अपने बच्चे को सही भोजन नहीं देते हैं तो वो बार बार बीमार पड़ सकते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो सकती है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और जो काम हम बताएंगे उनमें उनसे उनका चिड़चिड़ापन है वो बढ़ता जाएगा। अगर अंजलि जी खाना अगर बच्चे का स्वस्थ हो, पोषक तत्वों से भरपूर हो, तो हम देखते हैं कि बच्चे का हर काम में मन लगता है और हर काम को करने के लिए वो उत्सुक हो जाता है। इसीलिए श्रोता साथियों, सबसे पहले हमने अपने बच्चे के खाने का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पाए। आगे भी कुछ बातें हैं जो निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, पोषण माह में हमारी जिम्मेदारी को लेकर श्रोता साथियों बात करें तो हम इस पोषण माह ये संकल्प ले सकते हैं कि हम रोज भोजन में विविधता रखेंगे, बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक भोजन के लिए प्राथमिकता देंगे, स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का उपयोग बढ़ाएंगे, भोजन की स्वच्छता को सुरक्षित और पानी का ध्यान रखेंगे, कुपोषण के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करेंगे और जरूरत पड़ने पर आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सेवा से संपर्क करेंगे। श्रोता साथियों, पोषण केवल किसी एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, पूरा गांव मिलकर पोषण की स्थिति बेहतर कर सकता है। ग्राम सभा में पोषण पर चर्चा हो सकती है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण संबंधित गतिविधियां की जा सकती है, स्कूलों में बच्चों को संतुलित भोजन और स्वच्छता के बारे में बताया जा सकता है, महिला समूह स्थानीय व्यंजनों की जानकारी साझा कर सकती है, गाँव में उपलब्ध पारंपरिक और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को फिर से भोजन की थाली में स्थान दिया जा सकता है। क्योंकि श्रोता साथियों, हमारी पुरानी रसोई में कई ऐसे खाद्य पदार्थ रहे हैं जिन्हें आधुनिक जीवन शैली में हम भूलते जा रहे हैं। जरूरत है मनीषा कि उन्हें वैज्ञानिक पोषण की समझ के साथ फिर से अपनाया जाए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे गाँव और ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं जिन्हें श्रोता साथियों हम सामान्य समझ कर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यही खाद्य पदार्थ श्रोता साथियों पोषण के अच्छे स्रोत होते हैं। हम देखते हैं कि बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, चना, मूंग, मसूर, मूंगफली, तेल, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां और मौसमी फल ही वो हमारी पारंपरिक भोजन के हिस्से हैं।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही देखते हैं कि आज जब श्रोता साथियों महंगे और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के आधुनिक भोजन में समझ बढ़ती जा रही है, तब हम देखते हैं कि हमारे पारंपरिक भोजन है उनका उपयोग हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। स्थानीय और मौसमी भोजन का लाभ श्रोता साथियों तभी मिलता है जब हम उसे अपने घर में या हमारे आसपास के क्षेत्रों में उगाएं, उनका उपयोग करें और हमारे बच्चों और हमारे घर परिवार को उन्हीं पोषक तत्वों के लिए उन्हें समझाएं। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि एक ही प्रकार का भोजन रोज रोज खाने से शरीर में सभी आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है और हम देखते हैं कि हमारे शरीर को पोषण है वो मतलब मुश्किल से ही मिल पाता है। इसलिए श्रोता साथियों, भोजन में विविधता रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक दिन दाल के साथ आप हरी सब्जी, दूसरे दिन चना या दूसरी दाल खा सकते हैं, या अलग अलग अनाज या मौसम के अनुसार आप अलग अलग फल या सब्जियां शामिल कर सकते हैं। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि थाली में अलग अलग रंगों के फल और सब्जियां शामिल करना ही हमारे भोजन में विविधता लाना और लाने का आसान तरीका भी हो सकता है।
0: जी हाँ मनीषा, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को ये बात समझाना चाहेंगे कि गांव में कमला नाम की महिला रहती थी। वह रोज अपने परिवार के लिए भोजन बनाती थी। एक दिन उसने देखा कि उसका बच्चा सब्जियां नहीं खाता, पति दाल कम खाते हैं, घर में अक्सर भोजन के नाम पर रोटी और आलू ही बनते थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बातचीत के बाद कमला ने अपनी रसोई में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। कभी दाल, कभी चना, कभी मूंग, कभी हरी सब्जियां और मौसम के अनुसार उपलब्ध फल शामिल करने शुरू किए। घर में बाजरा और अन्य स्थानीय अनाजों का भी उपयोग बढ़ाया। कुछ समय बाद परिवार के सभी सदस्यों को महसूस हुआ कि भोजन में विविधता लाना मुश्किल नहीं है। कमला ने समझा कि पोषण के लिए बहुत पैसा नहीं, सही जानकारी और सही आदत ही जरूरी है। श्रोता साथियों, पोषण कोई एक दिन का विषय नहीं है, यह हमारे खेत से हमारी रसोई तक, रसोई से हमारी थाली तक और थाली से हमारे शरीर तक पहुंचने वाली पूरी यात्रा है। जब खेत में विविधता, विविध फसलें होंगी, रसोई में विविध खाद्य पदार्थ होंगे और थाली में संतुलित भोजन होगा, तभी हमारा परिवार मजबूत बनेगा।
1: बिल्कुल।
0: स्वस्थ बच्चा केवल अपने परिवार की खुशी नहीं होता, बल्कि वह पूरे समाज की ताकत होता है। एक स्वस्थ महिला केवल अपने घर की देखभाल करने वाली नहीं, बल्कि परिवार के भविष्य को मजबूत करने वाली आधारशिला होती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए इस पोषण सप्ताह में केवल पोस्टर और नारे तक इस चीज को हम सीमित न रखें। अपनी थाली में एक छोटा बदलाव करें, अपने परिवार में एक अच्छी आदत शुरू करें, अपने गांव में एक ऐसे व्यक्ति को पोषण के बारे में जागरूक करें, क्योंकि सही पोषण स्वस्थ जीवन की पहचान है। और
1: जी
0: इस
1: हाँ।
0: तरीके से ये सारी चीजें हम जन जागरूकता के तौर पर भी अपना सकते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत केवल कार्यक्रमों और भाषणों से नहीं, बल्कि हमारे छोटे छोटे संकल्पों से भी होनी चाहिए। आज ही श्रोता साथियों हमें यह संकल्प लेना है कि हम अपने भोजन में विविधता रखेंगे, स्थानीय और मौसमीय खाद्य पदार्थों को महत्व देंगे। साथ ही श्रोता साथियों दाल, अनाज, सब्जियां, फल जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ ही उन्हें हमारे भोजन में शामिल करेंगे। बहुत अधिक तले भुने और अत्यधिक मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन हम नहीं करेंगे। साथ ही साथियों नमक, चीनी, तेल का संतुलित हम उपयोग करेंगे। भोजन बनाने और खाने से पहले स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। बच्चों और परिवार के सभी सदस्यों को पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करेंगे। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि हम कभी भी भोजन की बर्बादी नहीं करेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी विशेष जरूरतें और डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी से सलाह लेंगे। ये सारे संकल्प अगर अंजलि जी हम लेते हैं और इन सभी का पालन करते हैं तो हम देखते हैं कि मनुष्य या जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में अधिक स्वस्थ रह पाता है और अपने जीवन के जो निर्णय होते हैं उन्हें वो अच्छी तरह से ले पाता है। इसलिए श्रोता साथियों आज ही अपने भोजन में विविधता लाइए।
0: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना। अब हम देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज पोषण माह को लेकर जो भी हमारी आपसे बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी,
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम के होस्ट कशिश पारशर। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपके साथ रोजाना बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच श्रोता साथियों, आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और अपनी फरमाइश के गीत आप सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है साथियों, आपको लिखना है, SMS करना है, लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहां का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है साथियों 9414082643। नंबर फिर से बताना चाहूंगी क्योंकि इसी नंबर के जरिए आप अपने राय सुझाओ और फरमाइश के गीत हम तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, हमारा नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, हमें इंतजार रहेगा आपके फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, ढेरों फरमाइशें कार्यक्रम के माध्यम से आ रही हैं, मैं बढ़ना चाहूंगी साथियों हमारी पहली फरमाइश के गीत की ओर। हमारी पहली फरमाइश आई है, आपको बताना चाहूंगी, दिलोपुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है सौदागर, गीत के बोल हैं इलू इलू। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत से, दिलोपुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इरकास, नरगिस खातून जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना

मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं फजिलका पंजाब से। विनोद मायल जी, सीमा लक्षिता, यशिका विधा देवी जी, सारा मायल जी और परिवार की सदस्यगण भी जुड़ रहे हैं और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। नाम बताना चाहूंगी, जुड़ रहे हैं सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कुमार जी, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत जी जुड़ना चाह रहे हैं और भी श्रोता साथी। आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, जुड़ना चाह रहे हैं जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम सुभाष चंदन, एकनाथ जाधव, संगीता जाधव। पौलगांव से जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से अब्दुल कलाम और नसीम मजूम जी। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं इलू इलू, तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था सौदागर फिल्म का इलू इलू, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। श्रोता साथियों, अगली फरमाइश हमारे बीच श्रीगंगानगर राजस्थान से आई है। श्रोता साथी जुड़ रहे हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कृति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा जी। इन श्रोता साथियों की फरमाइश है, ईमानदार फिल्म का गीत और इस दिल में क्या रखा है। इस प्यारे से गीत को आवाज़ दी है श्रोता साथियों आशा भोसले और सुरेश वाडकर जी ने। फरमाइश करता है जो इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और भी, संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जिया उलक अब्दुल रहमान डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी। हमारे साथी जुड़ रहे हैं जफराबाद मराठावाड़ा से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, देशमुख जी, वड़ाली देशमुख जी, जगुताई राजे जाधव देशमुख और संचित देशमुख जी, प्रथमेश सर्वत, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख जी, साथ ही समस्त राजे जाधव देशमुख परिवार जुड़ रहे हैं। इसी बीच पलाड़ी छत्तीसगढ़ से भी जुड़ रहे हैं दितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन। उमाली महाराष्ट्र से अनुप कुमार, उद्धव पाटिल जी और भी अनुरोध करता मधुबनी बिहार से सुनना चाह रहे हैं। एमडी परवाना, शब्बीर जी, साई जल्दी, जाहिद अली जी, शाहिद अली जी। नेहरू चौक फेटन से सुरेश यादव, अनिता यादव, आरती पूजा, प्रसाद यादव, सोनल यादव, बेबी सिया यादव। जलाना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम सुभाष चंदन, एकनाथ, संगीता यादव। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं और इस दिल में क्या रखा है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

0: श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, गीत के बोल थे दोस्तों, और इस दिल में क्या रखा है, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत बहुत ही प्यारा सा है, दीवार फिल्म का, जिसे आवाज दी है किशोर जी और आशा भोसले जी ने। गीत के बोल हैं, कह दो तुम्हें या चुप रहूं। इस प्यारे से गीत को सुनना चाह रहे हैं हमारे श्रोता साथी खुपटी से बंडू लोहार पोपलगढ़, चंद्रकला पोपलगढ़ जी। और भी दोस्त हैं जो इसी गीत को सुनने की चाह रखते हैं, बताना चाहूंगी। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, ईशान छिपा जी जुड़ना चाह रहे हैं। दादरी गेट भिवानी से भी कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। और भी अनुरोध करता है लोरमी चिजड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्परा ऋषभ मरावी जी। सहारनपुर से हैं जॉन डिकेस्ट्रो, जी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो जी। नई दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा जी। और भी दोस्त उमरखेड़ महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं अभिजीत गमहाड़कर, राही सरिता गमहाड़कर, सिद्धांत गमहाड़कर, एकांश गमहाड़कर और अर्जुन गमहाड़कर, टुकटुक जी। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिए आपके द्वारा भेजे गए फरमाइश के गीतों को।
1: तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी। ये फरमाइश हमारे बीच आई लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। फिल्म का नाम है कुर्बानी। गीत के बोल हैं, हम तुम्हें चाहते हैं। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं ताज बन अंसारी गुलाम शाह बिरही महराज जहां। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, खंडवा मध्य प्रदेश से विभिन्न सालिया डावर, हलीमा डावर, जिक्रा डावर, आयशा खत्री, फातिमा खत्री, तबस्सुम खत्री, खंडवा से शेख सईद रही अनस भाई जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में, गंज द्वारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज बेगम, इमरानाथ, नाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नाम देव जी। इंदौर मध्य प्रदेश से श्रोता साथी हैं जुड़ रहे हैं नरेश जी, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, लड्डू देविका चौधरी। इसी बीच जुड़ रहे हैं मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, प्रकाश मल्होत्रा। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, हम तुम्हें चाहते हैं। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगले फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है मोहब्बतें, गीत के बोल हैं चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं नेपा नगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन जी शाह, राजेंद्र शाह, सुषमा कपूर जी और भी दोस्त इस गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। मैं आपको नाम बताना चाहूँगी। बेरशहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर गटे, संगीता गटे, साक्षी गटे, अंजलि करवा, जयश्री मेहतर, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टहुल, बीपी कुलथे जी जुड़ना चाह रहे हैं। और भी साथी हमारे नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं, महाराज प्रतनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोकेशपुरी, ट्विंकल टिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी जी। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र, मनहरण वर्मा जी। जमशेदपुर से हैं हजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू तमन्ना भाटिया जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था और इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है उज्जैन मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों बताना चाहूंगी दिल एक मंदिर। गीत के बोल हैं हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में। आपको नाम बताना चाहूंगी, श्रोता साथी जुड़ रहे हैं विनोद मुणा, नेहा जैन, दीपक मयक मुणा, चेतन नाथ, दीक्षा कुश मुणा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी श्रोता साथी, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामचंद्र विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजनू, रजना, बदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। आपको नाम बताना चाहूंगी, श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं

सहारनपुर से सैयद मसूर, साइना अक्सर, नाजमा आफिया, इब्राहिम सद्दाम जी और भी दोस्त जुड़ रहे हैं। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाड़कर, निर्मा नवाड़कर, विशाल नवाकर महाराष्ट्र से हैं। नारायण इंग्लिश, सोपान दाइडे, आशीष मोहेरकर जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

0: श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। इस गीत के बाद साथियों फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है कुंभार गली कोलगाम से। फिल्म का नाम है साथियों बताना चाहूंगी, कभी खुशी कभी गम। गीत के बोल हैं से शावा शावा। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में कोलगाम से पांडु चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक, प्रथमेश चंदन, संतोष पांडुरंग कुमार जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त जुड़ रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, गुणवंत शिवास, करुणा शिवास, आयुष श्रीवास, विवेक शिवास, बेबी आयुष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज। जुड़ना चाह रहे हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका ने चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन, मंगल रोड छत्तीसगढ़ से हैं ये। छत्तीसगढ़ से डोरी लोहारा से जुड़ना चाह रहे हैं डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम, माहिर नेताम जी। कलानोर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा और भी साथी जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कोरबा से जुड़ना चाह रहे हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानो, बब्बन मुनहू, काना ठाकुर और हरिप्रिया जी। और भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा जी, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, सुनील जैन, विपिन गुप्ता, रंजन रजक, लालू सोना, मोना हनी, यश, सौम्या और परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। और भी दोस्त जाकोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। मैं नाम बताना चाहूंगी, श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, कवर्धा छत्तीसगढ़ से गुनीराम राजपूत, संतोषी, हेमप्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत जी। एमएलबी रोड ग्वालियर से है सुरेश खुराना, पप्पी लव्या, आरव खुराना, एस के पप्पी जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से है डॉक्टर नौशाम अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अबन सिद्दीकी, शहनवाज अहमद सिद्दीकी और सिद्दीकी परिवार के सभी सदस्यगण भी जुड़ रहे हैं। गांधीग्राम गुजरात से जुड़ना चाहे प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जौहरी जी। और भी दोस्त हैं कोंडागांव छत्तीसगढ़ से हैं सुभाष सिंह चक्रधारी, श्रीमती कविता चक्रधारी, मुस्कान अनुष्का भवानी चक्रधारी जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं से शावा शावा। तब तक आप बने रहिएगा दोस्तों कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाँ मैं देखता हूँ दादी माँ, मेरे साथ आइए।
2: Ladies and gentlemen, oh, forget it.

0: बस कीजिए, बहुत हो गया।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागा रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारशर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है यतला महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है 20 साल बाद। गीत के बोल ही नजरों से कह दो। इस गीत को आवाज दी है हेमंत कुमार ने। इस गीत के अनुरोध करता है शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, शुभम प्रसाद जयसवाल, अपनव जयसवाल, राखी जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल और तृप्ति जी जयसवाल। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं अनारकली बाजार जगराव पंजाब से। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल जी यादव। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं बदायूं से इशरत खान, शायरा खान, रफियो खान, शाबरीन बेगम, शहजाब खान, सेफ खान और ईशान जी खान। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही नजरों से कह दो। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागा रेडियो 90.8 FM पर।
2: नजरों से कह दो जी,

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजदार, नरगिस जी खातून। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं डाबकी रोड अकोला से शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या जी गोस्वामी और अन्नू जी गोस्वामी। गंजडवारा से जुड़ना चाह रहे हैं शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनु खान। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम और गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता, गीत के बोल हैं दिलबर मेरे। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु, बब्बन मीनू, काना और हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। बिहार से मीरा ज्योति, बिहार से जुड़ रहे हैं सोनम जी और अनामिका जी। इस गीत के अनुरोध करता है पंडितपुर सिटी से प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशरा सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घुड़गे जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुषी श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बीबी आरुषि श्रीवास,

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। फिल्म का नाम है धड़कन, गीत के बोल हैं दूल्हे का सेहरा। इस गीत की फरमाइश करता है साहिद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नूरिन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेगजी अंसारी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं पथरिया छत्तीसगढ़ से नरिन नेताम, कुसुम जी नेताम। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रतेश संगई।

गई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी और हिमांश जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं पटिया कला दुर्ग से संजय कुमार शाहू, शशांक शाहू, सीमाजी शाहू, सुजिता जी शाहू। इस गीत के अनुरोध करता है यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनकर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बीबी प्रियांशी जी। सरगांव छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांश जी वर्मा। इस गीत की अनुरोध करता है जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दुरापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सूरीज, राजपाज पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष सोहिनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है झारखंड से। फिल्म का नाम है काला बाजार। गीत के बोल ही रिमझिम की तरह ने लेकर आई बरसात। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद यासीन अनजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत जी और सादिया जी। इसी बीच जुड़ना चाह रही हैं हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक जी भाटिया। इस गीत की अनुरोध करता है अमरावती महाराष्ट्र से श्याम की टी, वंदना की टी, कार्तिक जी की टी। पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़ रही हैं बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष जी विश्वकर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रही हैं मुरादाबाद से माया देवी, ऋतिक और आदित्य जी का साना। महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं बाबा साहेब कणक्कर, साकरबाई कणक्कर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणी ईश्वरी और कणक्कर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। बंसोर से जुड़ना चाह रहे हैं राहुल जी, सम्यम जी, शरण जी और मीरा जी। अकोला से जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है आकोट से विनायक भिंडी, श्रीमती मंगला जी भिंडी, विजय शुभम, पवन जरिए और सजीव जी। बिहार से जुड़ना चाह रही अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमार और नीति कुमारी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं खड़वासी अब्दुल गफा डावर जी, अब्दुल हक डावर जी, जिया हक डावर जी। और छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं सोहन जोशी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है मोहब्बत जवा, गीत के बोल ही जब मोहब्बत जवा होगी। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है छन्नूला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजुगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जाफराबाद से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, जंगुताई राज यादव, सचिन देशमुख, प्रदेश देशमुख, सर्वत देशमुख, हर्षिता देशमुख, सानवीजी देशमुख और प्रणाला जी देशमुख। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं यूपी से सुरेश चौरासिया, श्रीमती सरोज चौरासिया, सबोध चौरासिया, सलोनी चौरासिया, संजय चौरासिया, लल्ला चौरासिया, बाबू शिवा, शिवानी चौरासिया, पवन घोड़े और योगेंद्र नायक कासगस जी। इस गीत के अनुरोध करता है जाकोत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं गंजडवारा से अफताब अंसारी, रियाना अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी, अनवर मास्टर, लुभाना अंसारी, आलिया जी अंसारी। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से प्रेम साया, सोमार साया, भगत हेमंत, खेलवान सिंह जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर और रुचिका रामेकर। रामेकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है मरियाना सरधाना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जब मोहब्बत जवा होगी। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है राहुल नगर अमरावती से। फिल्म का नाम है बेटा, गीत के बोल ही साजन में तेरी तू मेरा।

गीत को आवाज दी है अनुराधा जी ने और उदित नारायण जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है सिद्धार्थ गुड़ा ने, अर्चना गुड़ा ने, प्रणय प्रसिद्धि हीरामन जी शेंडे। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही है अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका जी रामेकर और रामेकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बीबी वामिका वानी जी थांदी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं मथुरा से सभा अंसारी, शकील अंसारी, हीना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं साजन में तेरी तू मेरा। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनोरी तेलीवाला से। फिल्म का नाम है तेरे नाम, गीत के बोल हैं क्यों किसी को। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है निसार सलमानी, नौसार सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारेश मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है नासिक से विशाल, सोनाली, समर्पण और भक्ति जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मुरादाबाद से अजित कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य जी कसाना। इस गीत के अनुरोध करता है बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव और भानुप्रिया जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं क्यों किसी को। इस गीत को आवाज़ दी है उदित नारायण जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, यह गीत आज की कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

प्रिय श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। साथियों, अब वक्त है शाम के खास कार्यक्रमों का जो आपके हर पल को बनाएगा खास, तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज के शाम के कार्यक्रम की रूपरेखा। साथियों, शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति शांति और सुकून से भरे सुरों के साथ दिन भर की थकान को अलविदा कहने का समय। इसी के साथ अगला कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर युवाओं की आवाज, जहां सपने बोलते हैं, विचार उड़ान भरते हैं और युवा अपनी बात खुलकर रखते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं और कशिश पाराशर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है श्रोता साथियों शाम 6 बजे कार्यक्रम सच्चा बचपन। इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे बच्चों की मासूमियत, मुस्कान और बचपन की यादों से भरा प्यारा सा सफर। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है खेतीबाड़ी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। ये कार्यक्रम किसानों के काम की बात, जमीन से जुड़ी सच्ची जानकारी और अनुभव है। इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। श्रोता साथियों, जैसे कि कार्यक्रम की रूपरेखा चल रही है तो हम अगला कार्यक्रम आपको बताते हैं। अगला कार्यक्रम शुरू होगा 7 बजे और इस कार्यक्रम का नाम है सच्चा स्वराज। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे समाज, सोच और सच्चाई से जुड़ी आवाज जो हमें जागरूक बनाती है। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम होगा हमारा स्वास्थ्य, जो कि सेहत और सम्मान की बातों के साथ होगा। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसे लेकर आएंगी आरजे कशिश पाराशर और हमारे रेडियो साथी मनीषा पटेल। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है समस्या समाधान, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। तो श्रोताओं, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा मैं आपको बता रही हूँ, तो अंत में आप सुनेंगे रात 9 बजे शामी कसले। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुनेंगे अल्फाज जो छू जाए, एहसास जो ठहर जाए, सुकून भरी रात की शुरुआत। तो श्रोताओं, शाम की घड़ियां यूं ही नहीं गुजरती, ये वो पल है जहाँ भक्ति भी है, युवा सोच भी है, बचपन की हंसी भी है, किसान की मेहनत भी है, सच की आवाज भी है, सेहत और सम्मान की बात भी है, संगीत का जादू भी है और गजलों का सुकून भी है। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागर रेडियो। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: जब सागर का जल वाष्प बनकर उड़ता है तब वो हमें दिखाई नहीं देता, मेघ उस जल को अपने भीतर छिपा लेते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो जल सदा उनके भीतर छिपा रहे, परंतु जब वायु का वेग उन्हें उड़ाकर किसी पर्वत से ले जाकर के टकरा देता है तब उन मेघों को बरसना ही पड़ता है, क्योंकि यही नियति है, यही प्रकृति है, क्योंकि जल को सागर में जाकर मिलना ही है। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम सत्य अपने मन के मेघों में चाहे जितना छिपाने का प्रयास कर लें, परंतु समय की आंधी उसे वास्तविकता के पर्वत से ले जाकर के टकरा कर हमारे समक्ष ले ही आती है, जिस भय के कारण आप सत्य को सामने नहीं लेकर आना चाहते। एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस भय का सामना करने की तैयारी नहीं की होती। इसलिए सत्य से भागे नहीं, उसे छिपाए भी नहीं, उसे स्वीकार करें, भविष्य की बड़ी विपत्ति से बच जाएंगे। कभी कभी आप सबके जीवन में एक ऐसी विचित्र समस्या अवश्य आती है कि शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाओ, क्यों शक्तिशाली से विवाद करने से बचने के लिए आप मौन रह जाते। मानता हूं ऐसा करने से आप एक विवाद से बच जाते, एक संघर्ष से बच जाते, परंतु ऐसा बचाव एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। कैसे? हमारा मौन रहना अनजाने में उसका समर्थन बन जाता है और वो स्वयं को अधिक शक्तिशाली अनुभव करता है और यहां से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं। तो इसका तोड़ क्या है, ये समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है। ये सामने वाले की शक्ति नहीं जो आपको रोकती है, ये आपके भीतर छिपा भय है जो आपको रोकता है। हाँ, कभी कभी भय आपकी सुरक्षा अवश्य कर सकता है, परंतु साथ साथ ये भी जानना आवश्यक है कि ये भय ही है जो आपको मौन भी रखता है। इसलिए अपने मन से भय को निकालिए और खुलकर अनीति का, अन्याय का विरोध कीजिए और फिर देखिएगा आपका मन कितना मुक्त, कितना हल।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की जब हर

0: बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे स्तुतिश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
2: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग अपना ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
2: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण अपने ने अपने मई देखाए तो अपने ने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
2: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले अपना ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हम बात करने वाले हैं, हर शुरुआत बेहतर बनने का एक नया मौका है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, जैसे कि हर सुबह सिर्फ एक नया दिन लेकर नहीं आती, बल्कि अपने साथ एक नई शुरुआत का अवसर भी लेकर आती है।
0: जी जी,
1: कल चाहे जैसा रहा हो, आज को बेहतर बनाने की संभावना हमेशा हमारे हाथ में ही होती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि जीवन निरंतर आगे बढ़ने का नाम है। इसमें कभी सफलता मिलती है तो कभी हमें असफलता मिलती है। श्रोताओं, कभी रास्ते हमें आसान लगते हैं तो कभी छोटी सी मंजिल तक पहुंचने में भी हमें बहुत मेहनत लगती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जीवन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत संभव होती है। कोई परीक्षा अच्छी नहीं गई, किसी काम में असफलता मिली, किसी लक्ष्य को हासिल करने में देरी हुई या किसी फैसले से मन मुताबिक परिणाम नहीं मिला, इनमें से कोई भी चीज जीवन की अंतिम कहानी नहीं है। श्रोताओं, ये केवल उस कहानी का एक अध्याय है। अगला अध्याय हम पहले से बेहतर लिख सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और विषय भी हम आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हर शुरुआत बेहतर बनने का एक नया मौका होती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि गीत से पहले भी आपने बताया था जागृति जी, कि हर सुबह सिर्फ एक नया दिन लेकर नहीं आती बल्कि अपने साथ एक नई शुरुआत का अवसर भी लेकर आती है।
1: बिल्कुल,
0: खासकर युवाओं के लिए तो ये विचार काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवावस्था सपनों, संभावनाओं, प्रयोगों और सीखने का समय होती है।
1: जी हाँ
0: साथियों, इस उम्र में कई बार हम अपने भविष्य को लेकर असमंजस में रहते हैं। हमें लगता है कि अगर एक बार गलती हो गई तो शायद सब खत्म हो गया।
1: जी हाँ,
0: अगर एक परीक्षा में कम अंक आ गए, अगर मनचाहा अवसर नहीं मिला, अगर किसी प्रतियोगिता में सफलता नहीं मिली या किसी रिश्ते अथवा दोस्ती में निराशा हुई है तो हम अपने आप को असफल मानने लगते हैं साथियों।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक घटना आपकी पूरी पहचान तय नहीं कर सकती। असफलता आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आपको ये समझाने के लिए आती है कि अगली बार आपको क्या बेहतर करना है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि नई शुरुआत का मतलब हमेशा कोई बहुत बड़ा फैसला लेना नहीं होता है। कई बार हम देखते हैं श्रोता साथियों कि नई शुरुआत बहुत छोटी होती है। सुबह समय पर उठना, पढ़ाई के लिए 1 घंटा नियमित करना, किसी नई कला को सीखना, अपनी गलत आदत को धीरे धीरे बदलना, किसी जरूरी काम को टालना बंद करना या अपने लक्ष्य के लिए आज एक छोटा कदम उठाना, ये सभी नई शुरुआत के उदाहरण हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम अक्सर सोचते हैं कशिश कि बदलाव एक ही दिन में होना चाहिए। हम तय करते हैं कि अब से सब कुछ बिल्कुल बदल देंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी दिनचर्या लौट आती है। इसीलिए युवाओं के समझना बहुत जरूरी है कि बेहतर बनने की यात्रा अचानक होने वाला परिवर्तन नहीं है दोस्तों, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है।
0: जी हाँ।
1: हर दिन खुद से ये पूछना चाहिए कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ।
0: बिल्कुल, क्योंकि युवा साथियों, अतीत को बदला नहीं जा सकता।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन उससे मिलने वाली सीख को भविष्य में जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि पिछली बार तैयारी आपके द्वारा कम की गई थी तो इस बार तैयारी बेहतर की जा सकती है।
1: जी हाँ,
0: अगर समय का सही उपयोग नहीं हुआ जागृति जी, तो अगली शुरुआत समय सारणी बनाकर हमारे युवा साथी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर किसी निर्णय का परिणाम अच्छा नहीं रहा साथियों, तो अगली बार निर्णय लेने से पहले अधिक सोच विचार किया जा सकता है। यानी कि सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी गलतियों को अपनी पहचान आप न बनने दें।
1: बिल्कुल,
0: गलती होना ये साबित नहीं करता युवा साथियों कि आप कमजोर हैं। गलती तो हमें ये बताती है जागृति जी कि हमें कुछ नया सीखने का अवसर किस प्रकार से मिल रहा है।
1: जी हाँ,
0: जो युवा अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वे धीरे धीरे अधिक समझदार, आत्मनिर्भर और मजबूत भी बनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि गलत कदम जीवन का अंत नहीं, सही दिशा में उठाया जाने वाला अगला कदम भी हो सकता है।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि असफलता के बाद शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण होती है। युवा जीवन में असफलता से सामना होना स्वाभाविक है।
0: बिल्कुल,
1: हर व्यक्ति हर परीक्षा में सफल नहीं होता है दोस्तों, हर प्रयास का परिणाम मनचाहा भी नहीं मिलता है, हर अवसर हमारे पक्ष में भी नहीं आते, लेकिन असफलता के बाद हम क्या करते हैं यही हमारे भविष्य को प्रभावित करता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कशिश कि कई बार असफलता हमें भीतर से निराश कर देती है, हमारा मन उदास होने लगता है, हमें तनाव होने लगता है और हम देखते हैं कि हमने जितनी मेहनत की थी वो बेकार चली गई, हम ऐसा सोचने लग जाते हैं।
0: जी जी।
1: लेकिन श्रोताओं, जरा सोचिए, दूसरी नजर से देखिए कि क्या वास्तव में मेहनत बेकार गई? नहीं, उस प्रयास ने आपको अनुभव दिया, आपकी कमियां दिखाई और अगली तैयारी के लिए दिशा दी।
0: बिल्कुल,
1: अगर कोई युवा किसी प्रतियोगिता में सफल नहीं हुआ है दोस्तों, तो वो अपनी तैयारी की समीक्षा कर सकता है। अगर किसी काम में अपेक्षित परिणाम नहीं मिला है तो वो अपनी रणनीति भी बदल सकता है।
0: जी हाँ,
1: शुरुआत दोबारा करना कमजोरी नहीं है बल्कि हिम्मत की निशानी है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। साथी अगर बात करें तो युवा साथियों, तुलना छोड़कर अपनी यात्रा पर आप ध्यान दें।
1: जी हाँ,
0: तो इस विषय को लेकर आगे हम कार्यक्रम में ढेर सारी बातें और भी जानेंगे जागृति जी, और जानेंगे कि ये जो बात कही गई है कि तुलना छोड़कर हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना है वो क्या है।
1: बिल्कुल,
0: तो बातें जरूर होंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी, हम बात कर रहे थे हर शुरुआत बेहतर बनने का एक नया मौका हमें देती है।
1: बिल्कुल,
0: यही अगर आपको बताए तो तुलना छोड़कर अपनी यात्रा पर हमें ध्यान देना चाहिए। यानी कि कशिश, आज के समय में युवाओं के सामने तुलना की एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोशल मीडिया पर हमें हर तरफ लोगों की उपलब्धियां दिखाई देती है। किसी ने नौकरी हासिल कर ली, किसी ने अपना व्यवसाय शुरू कर लिया, किसी ने कोई पुरस्कार जीत लिया, कोई नई जगह घूम रहा है। इन्हें देखकर कई युवा सोचने लगते हैं कि सब आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन दोस्तों हमें समझना होगा कि हर व्यक्ति की शुरुआत, परिस्थिति, क्षमता और यात्रा अलग अलग होती है। किसी और की गति को देखकर हम अपनी यात्रा को छोटा नहीं कर सकते। हमारा मुकाबला किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने कल के रूप से होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: आज अगर हमने कल से थोड़ा बेहतर काम किया तो आपने प्रगति की है। आज अगर आपने एक नई चीज सीखी दोस्तों, एक गलती सुधारी या अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम बढ़ाया, तो यह आपकी शुरुआत सफल है।
1: बिल्कुल जागृति जी। साथी जागृति जी, हम देखते हैं कि कई बार युवा साथी बड़ा सपना देखकर शुरुआत ही नहीं कर पाते।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी उपलब्धि कभी न कभी एक छोटे कदम से शुरू हुई होती है।
0: बिल्कुल,
1: अगर आप कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो पहले दिन विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ाई में सुधार करना चाहते हैं तो पूरी किताब एक दिन में खत्म करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो शुरुआत एक विषय या एक घंटे से भी हो सकती है।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, छोटा कदम भी कदम होता है। लगातार उठाए गए छोटे कदम ही एक दिन बड़ी दूरी तय करते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि कई युवा ये सोचते हैं कि अगले महीने से मैं शुरू करूंगा, परीक्षा खत्म होने के बाद शुरू करूंगा, अभी परिस्थितियां ठीक नहीं है, जब समय मिलेगा तब सीख लूंगा। इस तरह सही समय का इंतजार करते करते कई अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं। श्रोताओं,
1: बिल्कुल,
0: वास्तव में शुरुआत के लिए सबसे अच्छा समय अक्सर वही होता है जब हम निर्णय लेते हैं। परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल होने का इंतजार करने के बजाय उपलब्ध परिस्थितियों में पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है दोस्तों।
1: जी जी।
0: क्योंकि शुरुआत करने के बाद ही रास्ते दिखाई देने लगते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें कि खुद को बदलने की शुरुआत खुद से कैसे होती है, तो साथियों, हम अक्सर चाहते हैं कि परिस्थितियां बदले, लोग बदले, व्यवस्था बदले और अवसर हमारे पास ही आए।
0: जी हाँ।
1: लेकिन कई बार सबसे पहला बदलाव खुद में करना पड़ता है। अपनी सोच बदलना, अपने समय का सम्मान करना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना साथियों, और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना,
0: जी हाँ,
1: यही बेहतर भविष्य की नींव होती है जागृति जी। अगर आप साथियों हर दिन खुद से एक छोटा सा सवाल पूछें कि मैं आज अपने लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी।
0: बिल्कुल।
1: और जब सोच बदलती है जागृति जी, तो निर्णय बदलते हैं और निर्णय बदलने से आदतें बदलती हैं।
0: जी हाँ।
1: और जब आदतें बदलती हैं तो जीवन की दिशा भी बदल सकती है साथियों।
0: बिल्कुल, तो हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कशिश, कि जिंदगी में अगर कभी आपको लगे कि आप पीछे रह गए हैं, तो वहीं रुक मत जाइए। अगर कोई सपना अधूरा रह गया है तो उसे नए तरीके से आप पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई रास्ता बंद हो गया है तो दूसरा रास्ता जरूर खोजिए। अगर पहली कोशिश सफल नहीं हुई है तो अपनी तैयारी को बेहतर करके फिर से प्रयास कीजिए। आपके सामने अभी बहुत से अवसर है। आपको हर दिन खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है।
1: जी हाँ।
0: आपको बस हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की जरूरत है। अपने बीते हुए कल को लेकर पछतावे में समय मत गवाइए। श्रोताओं, आने वाले कल की चिंता में आज को मत खोइए। आज आपके पास जो समय है वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: बिल्कुल,
0: अगर आप सच में अपने जीवन में बेहतर शुरुआत करना चाहते हैं श्रोता साथियों, तो आज से कुछ छोटे छोटे कदम जरूर उठाइए।
1: जी हाँ।
0: एक स्पष्ट लक्ष्य को आप चुनिए, अपनी एक अच्छी आदत शुरू कीजिए, एक ऐसी आदत कम कीजिए जो आपके समय या ऊर्जा को बेवजह खर्च करती हो। हर दिन कुछ नया सीखिए, किताब पढ़िए, अनुभव व्यक्ति से मिलिए। अपनी प्रगति की तुलना केवल अपने पुराने रूप से कीजिए। असफलता के बाद खुद को दोष देने के बजाय कारण भी खोजिए। छोटी उपलब्धियों का भी सम्मान कीजिए, क्योंकि वही बड़े बदलाव की शुरुआत होती है।
1: जी हाँ जागृति जी, तो ऐसे में कार्यक्रम के माध्यम से अंत में हम हमारे दोस्तों को यही कहना चाहेंगे कि साथियों, आप इतना याद रखिए कि जीवन हमें बार बार शुरुआत करने का अवसर देता है। सूरज हर सुबह हमें यही संदेश देता है कि पिछली शाम चाहे जैसी रही हो, एक नई सुबह फिर आती है। उसी तरह जीवन में भी कोई गलती, कोई असफलता या कठिन दौर आपकी पूरी कहानी नहीं है श्रोता साथियों।
0: बिल्कुल,
1: हर शुरुआत अपने भीतर बदलाव की संभावनाएं लेकर आती है। इसलिए अगर कल कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आज बेहतर करने की आप कोशिश कीजिए।
0: जी हाँ।
1: अगर पिछली कोशिश अधूरी रह गई तो नई ऊर्जा के साथ फिर शुरुआत कीजिए।
0: बिल्कुल,
1: अगर रास्ता कठिन है तो अपनी गति धीमी कर लीजिए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि बेहतर बनने के लिए किसी चमत्कार की नहीं एक ईमानदार शुरुआत की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल, इसलिए हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि याद रखिए, बीता हुआ कल सीखे, आज का दिन अवसर है और आने वाला कल हमारी नई कहानी है। हर दिन थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा बदलेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कशिश सच यही है कि हर शुरुआत केवल शुरुआत नहीं होती, वो बेहतर बनने का एक नया मौका होती है।
1: जी हाँ जागृति जी, इन्हीं बातों के साथ श्रोता साथियों, अब जैसा कि कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहेंगे एक और गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागदरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो युवा साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आपकी साथी अंजलि पारेश्वर और आज का हमारा कार्यक्रम जुड़ा है एक ऐसे विषय से जो हर परिवार, हर माता पिता और हर बच्चे के भविष्य से जुड़ा है। आज हम बात कर रहे हैं 1 सितंबर से शुरू हो रहा है पोषण माह। जी हाँ श्रोता साथियों, पोषण का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं, सही पोषण का मतलब है बच्चों को ऐसा भोजन देना जिससे उसका शरीर मजबूत बने, दिमाग सही तरीके से विकसित हो और वह पढ़ाई से लेकर खेल और रोजमर्रा की गतिविधियों में आगे बढ़ सके। लेकिन क्या हमारे घर में मिलने वाला साधारण भोजन भी बच्चे के लिए पर्याप्त पौष्टिक हो सकता है? कुपोषण की पहचान कैसे करें? आंगनबाड़ी की इसमें क्या भूमिका है और परिवार इस पोषण माह में क्या संकल्प ले सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 महिलाओं की एक छोटी सी कहानी और कहानी के बीच बीच में हमारे विशेषज्ञ भी इन जरूरी सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए सुनते हैं आज का हमारा छोटा सा रेडियो ड्रामा।
1: अरे सीता, जरा इधर आना। मैं तो अपने बेटे मोहन को लेकर बहुत परेशान हूँ। खाना तो वो खाता ही नहीं है, हमेशा थका थका रहता है और पढ़ाई में भी उसका मन ही नहीं लगता।
2: अरे कमला, सिर्फ खाना कम खाने से ही तो ऐसा नहीं होता, तू उसे खिलाती क्या है?
1: बस वही जो घर में बनता है, कभी रोटी सब्जी कभी दाल चावल। वैसे मुझे लगता है कि पौष्टिक खाना तो बहुत महंगा आता होगा, दूध फल ड्राई फ्रूट्स, ये सब रोज कहाँ से लेकर आऊँ?
2: अरे बहन, ये तो गलत फहमी है, पौष्टिक भोजन का मतलब महंगा भोजन नहीं होता है।
1: तो फिर क्या खिलाऊँ?
2: अरे कमला, हमारे आसपास ही कितनी सारी चीजें हैं, दालें चना मूंगफली बाजरा मक्का हरी सब्जियां मौसमी फल, इन सभी को ही सही तरीके से मिलाकर खिलाया जाए तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को इससे अधिक पोषण मिलता है।
1: हाँ, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा कुपोषित हो रहा है?
2: इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चे का वजन और बढ़ती निगरानी करवा। अगर बच्चे का वजन उम्र के हिसाब से कम है, उसकी बढ़त रुक रही है या वह लगातार कमजोर और सुस्त रहता है, तो समय रहते ही स्वास्थ्य कर्मी की सलाह लेना जरूरी है।
1: अच्छा, मतलब सिर्फ बच्चा मोटा दिखे यही स्वस्थ होने की निशानी नहीं है?
2: बिल्कुल नहीं कमला, बच्चे की उम्र के अनुसार बढ़त वजन सक्रियता और विकास भी उतना ही देखना भी जरूरी है।
0: साथियों, जैसा कि अभी कमला और सीता की बातों को हमने सुना, यही अब हमारे बीच में विषय विशेषज्ञ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं मनोरंजन करवाना चाहूंगी आपको एक प्यारे से गीत के साथ में।

श्रोता साथियों, जैसा कि हमने गीत से पहले कमला और सीता की बातें सुनी कि किस तरीके से कमला जो है वो अपने बच्चे के

0: खाने को लेकर, उसके व्यवहार को लेकर परेशान थी। तो अब आगे जानते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ से कि किस तरीके से राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है, कुपोषण क्या है। तो आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में। मैम नमस्कार।
1: नमस्कार
0: मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागर रेडियो परिवार में। जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रही हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: जी, मेरा नाम डॉक्टर वनीता त्रिवेदी है। वागर रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं यहाँ पे जिला कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में बांसवाड़ा में कार्यरत हूँ।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आपने आपका परिचय हमें बताया और जैसा कि हम सभी 1 सितंबर से लेकर पूरे माह पोषण माह बनाते हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जानना चाहूंगी कि राष्ट्रीय पोषण माह क्यों मनाया जाता है।
1: जी जी, देखिए पोषण माह मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि पोषण माह का मतलब ये है कि पोषण को जन आंदोलन बनाना है। इसका मकसद ये है कि हर परिवार तक ये संदेश पहुंचे कि जो खान पान है वो अपना सही होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए और सही समय पर देखभाल से बच्चों और माताओं को और सभी को कुपोषण जैसी जो गंभीर समस्या है उससे बचाना ही इस जन आंदोलन का उद्देश्य है। तो इसीलिए पोषण माह मनाया जाता है।
0: तो जैसा कि मैम आपने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह क्यों मनाया जाता है, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि बांसवाड़ा में पोषण की स्थिति कैसी है, किस तरीके से यहाँ पर पोषण की चीजें हैं या कुपोषण की जो स्थिति है वो हमें देखने को मिलती है।
1: जी देखिए, बागड़ अंचल में बच्चों में नाटापन और दुर्बलता और महिलाओं में खून की कमी हमें देखने को मिलती है ना। खून की कमी बोले तो अनीमिया, ये एक मुख्य चुनौती है वागड़ अंचल में। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग जो है हमारा और महिला बाल विकास विभाग है, इन दोनों के साझा प्रयास से और जो अपने आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनकी सक्रियता कह सकते हैं या उनकी पोषण ट्रैकिंग की जो सिस्टम है उसकी वजह से अपने यहाँ की स्थिति में सुधार आ रहा है।
0: बिल्कुल,
1: ये हम कह सकते हैं।
0: बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया कि पहले के समय से लेकर अभी के समय में बदलाव आए हैं और सुधार जो है वो निरंतर अपनी प्रक्रिया में है कि किस तरीके से हम लोगों को कुपोषण को लेकर जागरूक कर सकते हैं। यही मैम अब मैं जानना चाहूंगी कि कुपोषण आखिरकार होता क्या है।
1: कुपोषण का अर्थ या कुपोषण क्या होता है ये उसको हम परिभाषित करना चाहें तो सिर्फ भूखे रहना या भूख से नहीं होता है कुपोषण का। हमारे शरीर में जो प्रोटीन है, विटामिंस है और जो ऐसे बैलेंस जो एनर्जी है उसका एक बैलेंस नहीं होना ये एक कुपोषण है। ऐसे नहीं कि हम भूखे रह गए तो हम कुपोषित हो गए, मतलब जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उसमें प्रोटीन, विटामिन और सारी तरह की चीजों का एक बैलेंस होना जरूरी होता है।
0: बिल्कुल।
1: अब उसमें जैसे कुपोषण क्या है तो ये बात हो गई और कुपोषण क्यों है ये अगर जाने हम तो इसके मुख्य कारण जो है वो है कि जन्म के बाद 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: अब बहुत सारे रीजन होते हैं कि वो अपना ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा के और उनको कुछ भी दे देते हैं, गाय का दूध, बकरी का दूध या व्हाटएवर, जो भी पाउडर मिल्क या जो भी। तो एक तो वो नहीं होना चाहिए और 6 महीने बाद एक सही समय पर पौष्टिक प्रिय आहार बच्चे का शुरू करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो ये एक रीजन रहता है और बार बार संक्रमण हो जाए, पेट में कीड़े हो जाए या भोजन में जो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए ना भोजन में।
0: बिल्कुल।
1: एक ही तरह का भोजन अपन नहीं करते हैं, अपने आपको भी पता होगा कि अपने भोजन की थाली विविध प्रकार की होती है। तो इसमें भोजन में विविधता की कमी से भी कुपोषण का शिकार होते हैं बच्चे।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आपने बताया कि कुपोषण क्या है और बच्चे कुपोषित क्यों होते हैं, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि घर में कुपोषण की पहचान कैसे की जा सकती है।
1: ये बहुत आसान है, अगर बच्चा उम्र के हिसाब से उसकी वजन या लंबाई नहीं बढ़ रही है। एक एज होती है ना, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एज होती है, अपन बच्चों में भी कंपैरिजन देखते हैं कि ये बच्चा 1 साल का है इतना एक्टिव है, ये बच्चा 1 साल का है ये इतना एक्टिव नहीं है, या अपन कंपैरिजन कर लेते हैं। कुपोषण को भी पहचानना बहुत आसान है।
0: बिल्कुल,
1: उम्र के हिसाब से एक तो वजन और लंबाई भी बढ़नी चाहिए। अगर उसके हाथ पैर बहुत पतले पतले हैं, पेट बाहर निकला हुआ दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, चेहरा बेजान सा, बाल बेजान से दिख रहे हैं, बच्चा हमेशा चिड़चिड़ा रह रहा है,
0: बिल्कुल
1: सुस्त रह रहा है, बार बार बीमार हो रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि बच्चे को अतिरिक्त पोषण की या चिकित्सकीय सलाह की बहुत जरूरत है। तत्काल उसको अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है और उसको डॉक्टर की एडवाइस की तुरंत जरूरत लगती है।
0: साथियों, अभी हमारे बीच में विषय विशेषज्ञ जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना। अब यहीं कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कमला और सीता किस तरीके से और बातों को जान पा रही हैं।
2: अरे सीता, आज तो तूने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन एक बात बता, सिर्फ घर का खाना ही काफी है या आंगनवाड़ी से भी कुछ मदद मिल सकती है?
3: अरे कमला, आंगनवाड़ी की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ बच्चों की वृद्धि की निगरानी, पोषण संबंधी जानकारी और जरूरत के अनुसार सेवाएं भी मिलती हैं। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं महत्वपूर्ण हैं।
2: अच्छा, और सरकार की योजनाओं के बारे में हमें कैसे पता चलेगा?
3: इसके लिए अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य केंद्र से जानकारी लेनी चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा कमला, जब हम उसके बारे में जानेंगे और पात्र होने पर उसका लाभ उठाएंगे।
2: अब समझ आया, बच्चे की अच्छी सेहत सिर्फ माँ की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है।
3: हाँ कमला बहन, और पोषण सिर्फ आज की सेहत के लिए ही नहीं, अच्छे पोषण से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास भी बेहतर होता है। स्वस्थ बच्चा पढ़ाई और दूसरी गतिविधियों में भी बेहतर तरीके से भाग ले सकता है।
2: तो इस बार पोषण माह में मैं एक संकल्प लेती हूँ, अपने बच्चे की थाली में विविधता को लेकर आऊंगी और उसकी बढ़त पर भी ध्यान दूंगी।
3: और कमला, मैं भी यह संकल्प लेती हूँ कि अपने आसपास के परिवारों को भी पोषण के बारे में जानकारी दूंगी।
4: स्वस्थ बच्चा, मजबूत परिवार और खुशहाल समाज, यही हमारा संकल्प है।
0: साथियों, जैसा कि कमला और सीता की बातों से हम ढेर सारी बातों को जान पाए, दोनों स्वस्थ बच्चा, मजबूत परिवार और खुशहाल समाज का संकल्प लेकर लोगों को जागरूक कर रही हैं कि कैसे हमें इन सारी चीजों को अपनाने की जरूरत है। यही अब हम हमारे विशेषज्ञ से आगे जानते हैं कि कौन कौन से सरकारी योजनाएं चल रही है, माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, पोषण और पढ़ाई का क्या संबंध है, ढेर सारी बातों को। तो आइए सुनते हैं विषय विशेषज्ञ की बातों को। तो जैसा कि मैम आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई है जिससे कुपोषण को कम करने में जागरूकता आ सके।
1: हमारी जो राजस्थान सरकार है वो कई स्तरों पर काम कर रही है। आंगनवाड़ी में भी पोषण 2.0 के तहत पूरा पोषाहार दिया जाता है, है ना, लैक्टेटिंग मदर्स को भी और बच्चों के लिए भी इस तरह की व्यवस्था है आंगनवाड़ी केंद्रों में। और जैसे अनीमिया मुक्त भारत अभियान भी चल रहा है, आप जानते होंगे कि इस अभियान के तहत हम हर मंगलवार को शक्ति दिवस मनाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: है ना, और उसमें आयरन की सिरप और जो ब्लू और पिंक टैबलेट्स हैं जो स्कूलों में देनी होती हैं, जो छोटे बच्चों के लिए पिंक टैबलेट और ब्लू टैबलेट, ये हम स्कूलों में वितरित करते हैं, जो कि हर मंगलवार को स्कूलों में बच्चों को खिलाई जा रही है।
0: जी जी।
1: तो इस तरह से जो अनीमिया मुक्त भारत अभियान है ये भी सरकार का प्रयास है, है ना, और जो पोषाहार दिया जा रहा है आंगनवाड़ी केंद्रों पर ये भी सरकार का प्रयास है। तो गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए हमारे हॉस्पिटल में भी माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर बना हुआ है, NRC कहते हैं कहीं पे, न्यूट्रिशन के लिए और माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर बना हुआ है, जहाँ पे कुपोषित जो बच्चे हैं उनको पहचान कर वहाँ पे 14 दिन तक रखकर बच्चे का निःशुल्क इलाज किया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और क्योंकि जैसे माँ भी, छोटा बच्चा है तो माँ भी उनके साथ रहेंगी, तो माँ की भी कोई आजीविका सफर हो रही है, इसलिए उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी योजना है सरकार की। अपने अस्पताल है ना, जो महात्मा गांधी अस्पताल, वहाँ पे माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर बना हुआ है, अलग से वहाँ स्टाफ है, 10 बेड है वहाँ पे, और वहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क इलाज और उसका बच्चे का खान पान और सारी तरह की वहाँ पे रख के बच्चे की मॉनिटरिंग की जाती है और माँ को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। एक तो ये योजना है, एक प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना भी है जिसमें भी आर्थिक सहायता दी जाती है। तो इस तरह की सरकार की पॉलिसीज हैं कि जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तो आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वाला जो है पोषण ट्रैकिंग सिस्टम, एक अनीमिया मुक्त भारत अभियान है, एक अपना ये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना है और एक हमारा एमटीसी है। तो इस तरह की सरकार की योजनाएं भी हैं। तो लोगों को आपके रेडियो के माध्यम से मैं जागरूकता भी लोगों में आए तो मैं दोबारा ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमें किसी भी तरह से उषित रहने की मतलब ऐसी कोई हमारी मजबूरी नहीं है। सरकार ने बहुत चला रखी है, बस आपके रेडियो के माध्यम से लोग जाने और जागरूक हो, मेरा यही रिक्वेस्ट है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम हम राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर बातचीत कर रहे हैं तो इसमें माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है?
1: देखिए, माता पिता को एक तो आप अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, कई बार अपने बच्चे की इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि बच्चा थका थका रह रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है या बार बार बीमार पड़ रहा है। तो हमें तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हमारे बच्चे में कोई ना कोई, हमें डॉक्टर की सलाह लेना और उसके इस चीज को उसका निवारण करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: हम ये नहीं कहते कि आप उनको महंगे महंगे काजू बादाम खिला दो या फल फ्रूट महंगे महंगे खिला दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस हमारी एक जो विविध थाली होती है भोजन की, जिसमें दाल हो, हरी सब्जियां हो, इस तरह की चीजें हो, तो माता पिता को ये देखना चाहिए कि एक तो बच्चा साफ सफाई का ध्यान रखे और एक समय पे उसको खाना मिलता रहे। एक अगर उसमें इस तरह की कोई चीजें देखने को मिल रही है, उम्र के हिसाब से उसकी वजन नहीं बढ़ रही है, लंबाई में कोई दिक्कत है या उसका तरह का कोई चीज है, तो ये पहचान के लक्षण उनमें क्लिक होने चाहिए और तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और ये सरकारी योजनाएं जो भी हैं उनका तुरंत फायदा उठाना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने माता पिता की क्या जिम्मेदारी बनती है इस चीज को लेकर हमें बताया है, यही अब बात आती है कि पोषण और पढ़ाई का आपस में क्या संबंध है?
1: जी जी, बहुत बहुत, इसका तो बहुत सीधा स्ट्रॉन्ग संबंध है। देखिए, अगर इंसान का दिमाग है, मतलब अपने ह्यूमन बीइंग मानव के दिमाग की बात करें अपन इंसान की, तो 80% जो दिमाग का विकास होता है ना वो शुरुआती सालों में ही हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: तो अगर नींव कमजोर होगी तो बच्चा स्कूल में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, जल्दी थक जाएगा, उसकी याददाश्त इतनी नहीं रहेगी। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बसता है।
0: बिल्कुल,
1: तो लाइक इनिशियल 5 ईयर्स से पहले पहले अगर बच्चे को सारी चीजें, न्यूट्रिशन सही मिले, साफ सफाई रहे, उसके अंदर खून की कमी ना हो और उसको सारे प्रोटीन, विटामिन्स और आयरन का जो भी सप्लीमेंट्स है वो प्रॉपर मिले उसके फूड में, तो बच्चा बहुत अच्छा, मैं ये तो नहीं कहती कि वो बन जाएगा कि कोई चमत्कारी हो जाएगा, लेकिन हाँ वो बच्चा स्वस्थ रहेगा और आने वाले जीवन की जो भी चुनौतियां हैं उनसे आराम से वो सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि एक शरीर स्वस्थ होगा तो उसमें दिमाग भी स्वस्थ रहेगा।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम कार्यक्रम में बातें बहुत अच्छी चल रही है, यही अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्थानीय भोजन कितना फायदेमंद होता है?
1: बिल्कुल, स्थानीय भोजन में ही सब कुछ है। अपने यहाँ तो बांसवाड़ा की धरती तो सबसे बेहतरीन आहार हमें देती है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि पोषण का दाम से क्या लेना देना नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: हमें काजू बादाम या सेब या इस तरह के महंगे महंगे फल फ्रूट या महंगे ड्राई फ्रूट खाने की जरूरत नहीं है। हमारी जो बांसवाड़ा की धरती है वो हमें बेहतरीन आहार देती है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे यहाँ मक्का है, हमारे यहाँ ज्वार है, चना है, दालें हैं, मोरिंगा है ना जो सहजन कहते हैं जिसे, सहजन की फली है, उसकी पत्तियां हैं, हरी सब्जियां हैं, इस तरह की बहुत सी स्थानीय चीजें हैं बाजार, जो कि जो डिब्बा बंद खाने का जो सिस्टम चल पड़ा है ना कि बाहर जंक फूड खाएं या इस तरह का कोई डिब्बा बंद खाना खाए, उससे बेटर है, उससे कहीं गुना बेहतर है।
0: बिल्कुल,
1: बस इसको आप साफ सफाई से और नियमित खाएं, आप अपनी थाली में विविध प्रकार के भोजन को सजा के खाएं कि जिसमें कि चपाती हो, चावल हो, दाल हो, हरी सब्जियां हो, तो ये इनफ है। गुड़ है, मूंगफली है, चना है, तो काफी चीजें हैं जो हमारे लिए इनफ होती है हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आपने हमें बताया कि स्थानीय भोजन हमारे लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि ये पोषण माह हम जो मना रहे हैं उसमें आंगनबाड़ी की क्या भूमिका है?
1: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो कह सकते हैं कि सोल्जर है, जमीनी स्तर पे तो उस क्षेत्र में जहाँ आंगनवाड़ी है वहाँ की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो वहाँ की कह लीजिए कि इस चीज के लिए पूरी तरह से

0: जिम्मेदार है, वही करती है, है ना। उनको काउंसिल करना, उनको सलाह देना, उनको सरकारी योजनाओं के बारे में बताना, उनको बुला के लाना, उनका वजन करना, उनके सारी जांचें करवाना, तो काफी उनको सरकारी योजनाओं के बारे में बताना। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायिका, एएनएम सिस्टर, इनका तो बहुत बड़ा रोल होता है, है ना। एएनएम सिस्टर उनका सारा टीकाकरण करवाती है समय समय पे, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी है जो पूरा उनके पोषण का और सारी सलाह का ध्यान रखती है।
1: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो यही अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस माह परिवार क्या संकल्प ले जिससे ये पोषण माह जो हम मना रहे हैं वो सफल हो पाए।
0: बहुत अच्छा सवाल है अंजलि आपका, कि वागड़ रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं से मेरा हर परिवार से यही अनुरोध रहेगा कि इस माह अपने को ये संकल्प लेना है कि घर की थाली हम रंग बिरंगी बनाएं, बाहर का जंक फूड छोड़ें और स्थानीय अनाज को हम अपनाएं, हरी सब्जियों को अपनाएं। सुपोषित बचपन होगा तो एक सशक्त और एक स्वस्थ बांसवाड़ा बन पाएगा, मेरा यही कहना होगा कि हमारे बांसवाड़ा में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं वो अगर उनका बचपन सुपोषित होगा तो एक सशक्त और एक स्वस्थ बांसवाड़ा की आधारशिला यही बनती है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी परिवारों से रिक्वेस्ट है कि हमें स्थानीय चीजें अपनानी है, हमें हमारी धरती जो पैदावार दे रही है उसका पूरा सम्मान करते हुए हमें हमारे जो भी स्थानीय चीजें हैं उनको खाना है, उनको अपने पोषण में इंक्लूड करना है।
1: बिल्कुल।
0: और हमारी थाली को पूरी रंग बिरंगी बना के और जंक फूड को अवॉइड करना है, यही मेरा कहना रहेगा।
1: बिल्कुल। तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: थैंक यू अंजलि, थैंक यू वेरी मच।
1: तो साथियों आपने जाना विशेषज्ञ के माध्यम से कि पोषण के लिए जरूरी नहीं कि हमारी थाली महंगी हो, हमारे आसपास मिलने वाले स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थ भी पोषण का अच्छा स्रोत हो सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम सच्चा बचपन से हम विदा लेना चाहेंगे। अंत में कहना चाहूंगी, बच्चे को देंगे सही पोषण, बढ़ेगा उसका तन और मन, हर थाली होगी पौष्टिक, हर बच्चा होगा स्वस्थ और सक्षम। आप सभी को आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई न बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे।

0: कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनों ने आपनी बुन अंजलि
1: ने आपनी बुन जागृति नु
0: राम राम। किसान भाई बुन आप सब नु घणमान स्वागत करा हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में ने आप सब हम री रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।
1: होवे किसान भाई बुन लेने हाजिर थी के हां कार्यक्रम खेतीवाड़ी खेतीवाड़ी ने एक ना विषय ने हाते आज ना ना कार्यक्रम ने माध्यम ते की आपड़े बात करवा रहा उन्नत बकरी पालन आपड़े हरते करी शका
0: होवे। तो जागृति बोन अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में आपड़े किसान भाई बहनों ते की घणा कनी वाते करंगा पण कार्यक्रम शुरू करा इने पहले आपड़े भाई बहनों ने आपड़े हमरावी दा गीत ने मोरे कर आपड़ी वाते
1: होवे। तो भाई बहन आप हमर तरो आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागर रेडियो 90.8 FM माते।

0: અંજલિ બોન, ગીત તો અહીં પૂરું, નાણા ગીતને બાદ એક વખત ફરી આપણે કિસાન ભાઈ બહેનોનો આપણે સ્વાગત કરો. આપણે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં નિઝિમ કે ગીત થી પહેલા આપણે વિષય બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાત કરવા રહ્યા કે ઉન્નત બકરી પાલન આપણે હરતે કરી શકા
1: હવે. તો જાગૃતિ બોન, અણા વિષય માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહે મને સર. તો સૌથી કે પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત અને મોરે કર આપણી વાતે
0: હોવે.
1: સર નમસ્કાર.
2: નમસ્કાર અંજલિજી, આપકો ઓર સભી શ્રોતાઓં કો ભી મેરા નમસ્કાર.
1: જી બિલકુલ સર, આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરના ચાહેંગે હમારે આજ કે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. સર, જૈસા કે આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે નિરંતર જુડતે રહેતે હૈ ઓર હમારી કિસાન ભાઈ બહેનો કો પશુપાલન સે જુડી હુઈ, જલ સ્વરાજ સે જુડી હુઈ ઢેર સારી જાણકારી દેતે હૈ. તો સર, આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં આપસે વાતચીત કા વિષય હૈ, હમ દેખતે હૈ કે હમારે કિસાન ભાઈ બહેન બકરી પાલન કરતે હૈ. હમ દેખતે હૈ કે બકરી પાલન સે ઉન્હે ઢેર સારે ફાયદે ભી હોતે હૈ ઓર ઉનકી આજીવિકા કા જો સ્તર હૈ વો ભી સુધરતા હૈ. તો એસે મેં યે જાણના ચાહુંગી કે હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ ઉન્હે ઉન્નત બકરી પાલન કે જો સૂત્ર હૈ વો કિસ તરીકે સે ધ્યાન મેં રખને કી જરૂરત હૈ, ક્યુંકી હમ દેખતે હૈ કે જબ તક ઉન્હે ઉન્નત બકરી પાલન કે જો સૂત્ર હૈ ઉનકા ધ્યાન નહીં હોગા તો બહોત સી બાર હમ દેખતે હૈ કે હમે નુકસાન ભી હો સકતા હૈ. તો એસે મેં સબસે પહેલે મેં કાર્યક્રમ કે માધ્યમ સે આપસે યહી જાણના ચાહુંગી કે જબ હમારે કિસાન ભાઈ બહેન બકરી પાલન કર રહે હૈ તો ઉસકી ઉત્તમ નસલો કા ચયન વો કૈસે કર સકતે હૈ.
2: જી ધન્યવાદ અંજલિજી, મેં બતાના ચાહુંગા, આપને બહોત હી મહત્વપૂર્ણ બાત આજ નિકાલી હૈ, ક્યુંકી હમ અગર હમારે આદિવાસી અંચલ કી બાત કરે
1: જી જી,
2: તો આજ તક બકરી પાલન કો મુખ્ય રૂપ સે ગરીબો, ભૂમિહીનો, મજદૂરો યા આર્થિક રૂપ સે કમજોર લોગો કા વ્યવસાય માના જાતા થા.
1: જી બિલકુલ.
2: પર આજ કી સ્થિતિ મે બકરી પાલન એક બડે અચ્છે વ્યવસાય કે રૂપ મે ઉભર કે આ રહા હૈ ઓર ઇસે બડે બડે ઉદ્યમો કે રૂપ મે સભી લોગ જો હૈ કરના શરૂ કર રહે હૈ.
1: જી બિલકુલ.
2: હમ અગર સૂત્ર કી બાત કરે તો પહેલા સૂત્ર તો હમે ધ્યાન મે રખના હોગા कि हम जिस उद्देश्य से बकरी पालन कर रहे हैं उसके लिए सही नस्ल क्या होगी.
1: जी बिल्कुल.
2: तो सामान्य रूप से यदि हम बात करें कि हमारा बकरी पालन का उद्देश्य क्या है,
1: जी जी,
2: तो यदि हम दुग्ध उत्पादन के लिए बकरी पालन कर रहे हैं तो हमें उसके लिए जो उत्तम नस्लें हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करना होगा.
1: जी जी.
2: इसी तरह से यदि हम मांस के लिए बकरी पालन कर रहे हैं कि हमें उनको इस उद्देश्य से पाल के बेचना है तो हमें उस हिसाब से इनकी जो नस्लें हैं उनमें से चुनना होगा.
1: जी जी.
2: तो उन्नत बकरी पालन का पहला सूत्र है कि हम उन्नत नस्ल को चुने और ऐसी नस्ल को चुने जो हमारे क्षेत्र में आसानी से समन्वय स्थापित कर पाती हो.
1: जी बिल्कुल.
2: कई बार शायद कुछ किसान बंधु ये गलती करते हैं कि वो ऐसे क्षेत्र से बकरी ले आते हैं उन्नत किस्म की
1: जी जी,
2: जो हमारे क्षेत्र में सेट नहीं हो पाती है.
1: जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हम बकरी पालन कर रहे हैं और बकरियां हम अलग अलग नस्ल की इधर उधर देखकर या किसी के बहलावे फुसले में आकर ले आते हैं लेकिन वो हमारे क्षेत्र में उत्तम तरीके से कार्य नहीं कर पाए तो हम देखते हैं कि हमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है. तो ऐसे में हमारे किसान भाई बहनों को सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखना है कि वो जो भी बकरी ला रहे हैं उसका ध्यान रखे कि वो हमारे यहाँ की जलवायु के अनुकूल सेट हो पाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो जलवायु का परिवर्तन है उसी हिसाब से हमें बकरियों का चयन करना है. यहीं सर अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे किसान भाई बहन उत्तम नस्ल की जो बकरियां हैं वो ले तो आते हैं, उसका चयन तो कर लेते हैं, लेकिन उनके आहार और पोषण का किस तरीके से उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है.
2: जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब अपने व्यवसायिक को बढ़ाने के लिए या अपनी आजीविका के लिए बकरी पालन करते हैं तो इसमें हमें दूसरा है कि आहार और पोषण का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है
1: जी जी.
2: ताकि जिस उद्देश्य से हम बकरी पालन कर रहे हैं वो उतना उत्पादन दे पाए
1: जी जी
2: जितना हम चाहते हैं. तो इसमें आहार और पोषण की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है.
1: जी बिल्कुल.
2: बकरियों के लिए संतुलित आहार का महत्व बहुत अधिक है. बकरियों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज और विटामिन की उचित मात्रा की आवश्यकता होती है.
1: जी बिल्कुल.
2: उनके आहार में हरा चारा, इसके साथ में सूखा चारा और खनिज लवण शामिल होना चाहिए.
1: जी हाँ.
2: यदि इतना हम उनके पोषण में आहार में इतना पोषक देते हैं तो इससे इनकी अच्छी बढ़वार होगी, हमारा उद्देश्य पूरा होगा, उत्पादन पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि हम ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपके माध्यम से जान पा रहे हैं कि किस तरीके से बकरी पालन करते समय हमें उनके आहार और पोषण का ध्यान रखना है, वहीं सर हम देखते हैं कि हम मनुष्य की तरह भी हमारे जो जीव जंतु होते हैं, हमारे जो पशु पक्षी होते हैं, उन्हें बीमारियां हो जाती है। तो हमारे जो पशु होते हैं, जैसे कि हम उन्नत बकरी पालन की बात कर रहे हैं, तो बकरियों के स्वास्थ्य का और स्वच्छता का प्रबंधन हमें किस तरीके से करना होगा?
2: जी अंजलि जी, तो हम उन्नत बकरी पालन के सूत्र के रूप में ये तीसरा बिंदु महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो बकरियों को समय समय पर टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है।
1: जी जी।
2: क्योंकि इनके अभाव में या तो ये गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं, या कई बार किसान को पशु हानि हो जाती है।
1: जी बिल्कुल।
2: जिससे उनके जो उद्देश्य हैं बकरी पालन के, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: तो पहली चीज तो हम अपने तरीके से अपने बकरी को देखते रहें, समझते रहें कि कहीं उसमें ऐसे कोई लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं जिससे ये लगे कि ये अस्वस्थ है, वो चारा कम खा रही है, वो पानी नहीं पी रही है, वो सुस्त बैठी है, नाक से या आंख से पानी आ रहा है, उनका मल सामान्य है। तो ये सामान्य सी चीजें हैं जिनको देख के हम उनके स्वास्थ्य को समझ सकते हैं।
1: जी जी।
2: और दूसरा इसमें जो पहले भी मैंने बोला कि टीकाकरण समय पे करवाने जरूरी है। अगर हम टीकाकरण समय से करवाते रहते हैं तो इनके बीमार होने की संभावना नगण्य हो जाती
1: जी
2: है।
1: बिल्कुल सर। सर आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो पशु रोग विशेषज्ञ हैं, वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमें समय समय पर हमारे पशुओं का टीकाकरण कराते रहना है, ताकि हमारे जो पशु हैं उन्हें बीमारियां कम लगे। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी हम पशुओं की देखभाल करते हैं तो उनके लक्षणों से, हाव भाव से हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारे पशु को किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। यही सर, जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही है, अब मैं जानना चाहूंगी कि हमारे जो बकरी पालन जब हम कर रहे हैं तो उनमें उनका आवास का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं?
2: हम बकरी पालन के उन्नत सूत्र में इसको भी रखते हैं। आवास प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रबंधकीय क्षमताओं में से एक है।
1: जी जी।
2: तो बकरियों के जो रहने की जगह होती है उसको हमेशा साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी होता है।
1: जी जी।
2: बकरियों के आश्रय को नियमित रूप से साफ करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे परजीवी नियंत्रण भी आसानी से हो जाता है।
1: जी बिल्कुल।
2: अगर हम उनके आवास को साफ और सुरक्षित रखते हैं तो कई तरह के खतरों से हम उनको बचा पाते हैं।
1: जी जी।
2: और मौसम अनुसार यदि हमें लगता है तो उनके आवास में हल्के फुल्के बदलाव किए जा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: जैसे कि गर्मियों में उन्हें ज्यादा खुलादार वातावरण मिलना चाहिए जिससे हवा का आना जाना बना रहे और उनके आवास में प्राकृतिक रूप से ठंडक बनी रहे। इसी तरह यदि हम ठंड में बात करें तो ठंड से बचाने के लिए इस तरह की रणनीति अपनाई जानी चाहिए या प्रबंधन किए जाने चाहिए जिससे उन्हें ठंड से बचाया जा सके।
1: जी बिल्कुल।
2: और इसी तरह बारिश में उन्हें बारिश से बचाएं, उन्हें पानी से बचा सकें और किसी तरह से जो है वो लंबे समय तक भीगे ना।
1: जी बिल्कुल।
2: अगर हम इनके आवास के प्रबंधन में इन सामान्य सी बातों का ध्यान रखते हैं और इस तरह से उसका प्रबंधन करते हैं तो हमारे उन्नत बकरी पालन से होने वाले लाभ हमें पूरी तरह से मिलेंगे।
1: जी जी।
2: जिससे हमारे उद्देश्य आसानी से पूरे किए जा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो आपके माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि उन्नत तरीके से हमारे जो किसान भाई बहन हैं, वो बकरी पालन कैसे कर सकते हैं। यही सर, आपसे मैं अंत में संदेश जानना चाहूंगी जिससे हमारे जो किसान भाई बहन हैं, उन्हें और भी कुछ ऐसे सुझाव हो जो बाकी रह गए हो वो मिल पाए।
2: प्रमुख रूप से यदि हम बात करें तो हमने जो बातें की हैं ये बहुत पर्याप्त हैं। बकरी पालन आज के समय में सिर्फ आवश्यकता नहीं रह गई है, ये हमारे आजीविका का एक अच्छा साधन है।
1: जी बिल्कुल।
2: हम परंपरागत रूप से बकरी पालन करते भी आए हैं, पर यदि मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि हम अगर इन सूत्रों का ध्यान रखें तो हम बकरी से मिलने वाले उत्पादन, चाहे वो दूध हो, चाहे उनके होने वाली संतति हो,
1: जी जी।
2: अपने बकरी पालन से पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा आर्थिक लाभ उठा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
2: जी आपका और वागड़ रेडियो का धन्यवाद अंजलि जी।
1: ભાઈ બોનો, જેમ કે આપણે આપણે વયસમાં મનીષ સર જોડ્યા તક હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા થકી બતાડ દીધું હે કે ઉન્નત બકરી પાલનના કયા કયા સૂત્ર હે ને હરતે અગર આપણે બકરી પાલન કરવું ચાહી રહ તો સબતે કે પહેલે આપણને આપણે જે ભી ક્ષેત્રમાં રહી રહ

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं स्वराज की पहली सीढ़ी जिम्मेदार नागरिक को लेकर। तो अंजलि, स्वराज केवल शासन व्यवस्था में बदलाव का नाम नहीं है, स्वराज तो उस सोच का नाम है जहाँ हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को भी समझता है और अपने गांव, समाज तथा देश के विकास में अपनी जिम्मेदारी निभाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, जब हम स्वराज की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और अपने निर्णय स्वयं लेने की भावना आती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, क्या केवल अधिकार मिल जाने से स्वराज स्थापित हो जाता है? क्या अपने अधिकारों की मांग करना ही एक अच्छे नागरिक की पहचान है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि जागृति जी, स्वराज की वास्तविक सफलता तब होती है जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी स्वीकारता है। इसलिए कहा जाता है कि स्वराज की पहली सीढ़ी एक जिम्मेदार नागरिक है।
0: जी हाँ अंजलि, स्वराज की पहली सीढ़ी को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि अपने जीवन, अपने समाज, अपने विकास से जुड़े निर्णयों में सक्रिय भागीदारी निभाना बहुत जरूरी है। ये भावना तभी मजबूत हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति ये समझे कि समाज को बेहतर बनाना केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। हम सभी इस व्यवस्था का हिस्सा है और इसीलिए हमारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: बिल्कुल। इसी के साथ कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से जागृति जी कि जिम्मेदार नागरिक आखिरकार होता कौन है?
0: बिल्कुल।
1: तो साथियों, जिम्मेदार नागरिक वह है जो अपने हित के बारे में नहीं सोचता बल्कि समाज और समुदाय के हित को महत्व देता है। वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहता है लेकिन साथ ही अपने कर्तव्यों को भी ईमानदारी से निभाता है।

0: सकता है।
1: कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों कि एक जिम्मेदार नागरिक कानून का सम्मान करता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करता है, पर्यावरण को बचाता है, पानी की कीमत समझता है, स्वच्छता बनाए रखता है और जरूरत पड़ने पर समाज के साथ खड़ा होता है। जिम्मेदारी केवल बड़े कार्यों में नहीं दिखाई देती। अपने घर के आसपास कचरा न फैलाना, पानी व्यर्थ न बहने देना, पेड़ पौधों की देखभाल करना, सड़क पर नियमों का पालन करना, विद्यालय और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना जैसे छोटे छोटे कार्यों में भी जिम्मेदार नागरिकता का हिस्सा है।
0: बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि बदलाव की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। हम अक्सर ये कहते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, प्रशासन को वो करना चाहिए, गांव में ये सुविधा होनी चाहिए, समाज में ये बदलाव आना चाहिए। हमारी मांगे उचित हो सकती है श्रोताओं, लेकिन इसके साथ हमें यह भी पूछना चाहिए कि इस बदलाव में मेरी भूमिका क्या है। अगर हम स्वच्छ गांव चाहते हैं अंजलि, तो हमें स्वयं स्वच्छता की शुरुआत करनी होगी। अगर हम पानी बचाना चाहते हैं श्रोताओं, तो हमें अपने घर से जल संरक्षण की शुरुआत करनी होगी। अगर हम शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, तो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना भी हमारी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल,
0: यही आत्म जिम्मेदारी स्वराज की पहली सीढ़ी है।
1: बिल्कुल, यही अब जागृति की बात आती है, अधिकार और कर्तव्य साथ साथ। जी हाँ श्रोता साथियों, लोकतंत्र हमें अनेक अधिकार देता है।
0: बिल्कुल,
1: हमें अपनी बात कहने, निर्णय में भाग लेने और अपनी आवश्यकताओं को सामने रखने का अधिकार है, लेकिन अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारी आवाज सुनी जाए, तो हमें दूसरों की आवाज भी सुननी होगी। यदि हम अपने अधिकारों की रक्षा चाहते हैं, तो हमें दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी करना होगा।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों, एक जिम्मेदार नागरिक कहता है कि मुझे क्या मिला के साथ साथ मैंने समाज को क्या दिया। यही सोच व्यक्ति को अधिकार मांगने वाले नागरिक से जिम्मेदारी निभाने वाला नागरिक बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ कहना चाहेंगे कि गांव के विकास में नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि गांव का विकास केवल सड़क, भवन या सरकारी योजनाओं से नहीं। वास्तविक विकास तब होता है जागृति जी, जब गांव के लोग अपने विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बनते हैं।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि गांव की समस्याओं को समझना, प्राथमिकता तय करना, योजनाओं की जानकारी लेना और उनके क्रियान्वयन पर नजर रखना नागरिक भागीदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: बिल्कुल,
0: अगर गांव में पानी की समस्या है, तो लोग मिलकर जल स्रोतों की स्थिति समझ सकते हैं, वर्षा जल को बचाने के उपाय कर सकते हैं और जल के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जागरूकता फैला सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर गांव में स्वच्छता की समस्या है, तो केवल सफाई कर्मी की प्रतीक्षा करने के बजाय समुदाय स्वयं भी स्वच्छता अभियान चला सकता है। जब गांव के लोग अपने विकास में सहभागी बनते हैं श्रोताओं, तब स्वराज मजबूत होता है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि जागृति जी कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे विषय पर हमारी श्रोता साथियों से बातें चल रही हैं, ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही अब बात आती है ग्राम सभा स्वराज का महत्वपूर्ण मंच। जी हाँ श्रोता साथियों, गांव में लोकतांत्रिक भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम ग्राम सभा है।
1: बिल्कुल,
0: ग्राम सभा केवल एक बैठक नहीं है बल्कि गांव के लोगों को अपनी बात रखने और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर देती है। एक जिम्मेदार नागरिक ग्राम सभा में भाग लेता है, अपनी समस्याएं सामने रखता है, दूसरों की बात सुनता है और गांव के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर निर्णय लेने में सहयोग करता है। जागृति जी, ग्राम सभा में सक्रिय भागीदारी का अर्थ केवल बोलना नहीं होता है, सही जानकारी लेना, सवाल पूछना, सुझाव देना और लिए गए निर्णयों के प्रति जागरूक रहना भी उतना ही जरूरी है। जब नागरिक निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं तो लोकतंत्र जमीनी स्तर पर मजबूत होता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि गांव की सड़क, विद्यालय, तालाब, कुआं, आंगनवाड़ी, सामुदायिक भवन और अन्य सार्वजनिक संसाधन किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, ये पूरे समुदाय की साझा संपत्ति है। लेकिन कई बार हम सार्वजनिक चीजों को अपना समझकर उनकी देखभाल नहीं करते हैं, दीवारों को गंदा करते हैं, नलों को खुला छोड़ देना, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालना या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना समाज के विकास को कमजोर करता है। श्रोता, जिम्मेदार नागरिक ये समझता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना अपने ही संसाधनों की रक्षा करना है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे जीवन में पानी का महत्व किसी से छिपा नहीं है अंजलि, फिर भी कई बार हम पानी को आसानी से उपलब्ध संसाधन समझकर उसका अनावश्यक उपयोग करते रहते हैं। श्रोता, जिम्मेदार नागरिक पानी की हर बूंद का महत्व समझता है, वो घर में पानी की बर्बादी रोकता है, वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देता है और समुदाय को जल स्रोतों की रक्षा के लिए प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल,
1: तालाब, कुएं और पारंपरिक जल स्रोत केवल पानी के साधन नहीं है बल्कि गांव की प्राकृतिक संपदा है। उनकी देखभाल करना आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे कहना चाहेंगे कि पानी बचाना केवल पर्यावरण की सेवा नहीं श्रोताओं, बल्कि स्वराज की नींव को मजबूत करना है।
0: बिल्कुल जागृति जी, यही बात आती है स्वच्छता से स्वस्थ समाज की।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, स्वच्छता किसी एक दिन का अभियान नहीं बल्कि जीवन शैली है। जब हम अपने घर को साफ रखते हैं तो हमें अपने मोहल्ले और गांव को भी साफ रखने की जिम्मेदारी समझनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: कचरा निर्धारित स्थान पर डालना, गीले और सूखे कचरे को अलग करना, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाना और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना जिम्मेदार नागरिक के व्यवहार की पहचान है। एक साफ सुथरा गांव न केवल सुंदर दिखाई देता है बल्कि स्वास्थ्य, सम्मान और आत्मविश्वास का वातावरण भी बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि आज पर्यावरण संरक्षण केवल विशेषज्ञों का विषय नहीं है, इसका संबंध हर व्यक्ति के जीवन से है। पेड़ हमारे जीवन का आधार है, इसलिए पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं, उसकी देखभाल करना भी जरूरी है। पानी, मिट्टी और जीव विविधता की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जागृति जी, एक जिम्मेदार नागरिक प्रकृति को केवल संसाधन नहीं मानता बल्कि जीवन का साथी समझता है।
1: जी हाँ।
0: यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी होंगी, इसलिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को अंजलि हम कहना चाहेंगे कि युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को ये बातें बताते हैं,
0: बिल्कुल,
1: हमारे युवाओं के पास ऊर्जा है, नए विचार है और बदलाव लाने का उत्साह भी है। युवा गांव में शिक्षा, तकनीक, खेल, पर्यावरण, रोजगार और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, आपको कहना चाहेंगे कि आज मोबाइल और इंटरनेट ने जानकारी तक पहुंच आसान बना दी है, लेकिन तकनीक का सही उपयोग भी जिम्मेदार नागरिकता का हिस्सा है। गलत जानकारी फैलाने के बजाय सही जानकारी साझा करना, अफवाहों से बचना और डिजिटल माध्यमों का सकारात्मक उपयोग करना भी बहुत जरूरी है। अगर अंजलि ये युवा संकल्प ले लें कि वे अपने गाँव के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे तो स्वराज की यात्रा को नई गति मिल सकती है।
0: बिल्कुल, यही जागृति जी, इसमें महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो श्रोता साथियों, किसी भी समाज का वास्तविक विकास तब संभव है जब महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। महिलाएं परिवार, कृषि, पशुपालन, जल प्रबंधन, शिक्षा और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसकी आवाज को निर्णय प्रक्रिया में स्थान देना केवल समानता का विषय नहीं बल्कि बेहतर विकास की आवश्यकता है। जब महिलाएं ग्राम सभा और स्थानीय निर्णयों में सक्रिय भागीदारी करती है तो विकास की प्राथमिकताएं अधिक व्यापक और समाज की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप बन सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि जिम्मेदार नागरिकता का एक महत्वपूर्ण आधार ईमानदारी है। यदि हम समाज में पारदर्शिता चाहते हैं तो हमें स्वयं भी ईमानदार व्यवहार अपनाना होगा।
0: बिल्कुल,
1: गलत को देखकर चुप रहना हमेशा सही नहीं होता दोस्तों। अपनी बात सम्मान पूर्वक रखना, सही जानकारी प्राप्त करना और गलत सूचना या अफवाह को आगे न बढ़ना जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। एक जागरूक नागरिक सवाल पूछता है, लेकिन सवाल के साथ साथ समाधान में भी सहयोग करता है।
0: बिल्कुल,
1: स्वराज की भावना हमें व्यक्तिगत सोच से सामूहिक सोच की ओर ले जाती है अंजलि। जब हमारी सोच केवल ये रहती है कि मेरे घर में पानी आ जाए तो जिम्मेदारी सीमित रहती है, लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमारे पूरे गांव में पानी सुरक्षित रहे, तब हमारी सोच स्वराज की दिशा में आगे बढ़ती है। श्रोताओं,
0: बिल्कुल,
1: मेरा परिवार से मेरा गांव, मेरे गांव से मेरा समाज और मेरा समाज से मेरा देश, यही जिम्मेदार नागरिक की सोच का विस्तार है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि समाज में बदलाव लाने के लिए बहुत बड़ा पद, बहुत पैसा और बहुत प्रभावी होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति पानी बचाता है तो दूसरा पेड़ लगा सकता है, तीसरा व्यक्ति बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है तो चौथा स्वच्छता की पहल कर सकता है, पांचवा ग्राम सभा में सक्रिय भागीदारी कर सकता है। तो जब ये छोटे छोटे प्रयास एक साथ जुड़ते हैं तो बड़ा परिवर्तन जन्म लेता है। इसलिए हमें बदलाव के लिए किसी और का इंतजार नहीं करना चाहिए, शुरुआत हम से ही होनी चाहिए।
1: जी हाँ, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें की, अंत में छोटी मोटी बातें रहेगी वो जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में, और हमारी बातें चल रही थी स्वराज की पहली सीढ़ी जिम्मेदार नागरिक को लेकर। मैं आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमें समझना बहुत जरूरी है कि स्वराज किसी एक व्यक्ति, संस्था या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। स्वराज हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदार नागरिक अपने अधिकारों को जानता है, अपने कर्तव्यों को निभाता है, समाज की समस्याओं को अपनी समस्या समझता है और समाधान का हिस्सा बनता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा गांव आत्मनिर्भर बने, हमारा समाज मजबूत बने और हमारा देश आगे बढ़े, तो हमें सबसे पहले अपने भीतर जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी होगी। हमें ये अपने मन में दृढ़ संकल्प लेना होगा कि मैं पानी की हर बूंद को बचाऊंगी, मैं स्वच्छता का ध्यान रखूं, मैं प्रकृति की रक्षा करूं, मैं सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर उसकी देखभाल करूं, मैं ग्राम सभा और सामुदायिक निर्णयों में भाग लूं, मैं सही जानकारी को बढ़ावा दूं और अफवाहों से बचूं, मैं अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को भी निभाऊं। क्योंकि जब एक नागरिक बदलता है अंजलि, तो एक परिवार बदलता है। जब परिवार बदलते हैं तो समाज बदलता है, और जब समाज जिम्मेदार बनता है तब स्वराज मजबूत होता है।
1: बिल्कुल। इसलिए श्रोता साथियों, याद रखिए कि स्वराज बाहर से मिलने वाली व्यवस्था नहीं, भीतर से पैदा होने वाली जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ।
1: और इसी जिम्मेदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है। स्वराज की पहली सीढ़ी जिम्मेदार नागरिक। जिम्मेदार नागरिक की पहली पहचान कर्तव्य के प्रति ईमानदारी, और मजबूत समाज की पहली जरूरत मैं नहीं हम की सोच है।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें की, आप देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। पर जाते जाते आपको हमारा पता बताना चाहेंगे, ताकि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल
2: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
1: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी बातचीत का विषय है मोबाइल और ईयरफोन का इस्तेमाल, कानों की सेहत का हम कैसे ख्याल रखें। श्रोता साथियों, मोबाइल ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है। फोन पर हम परिवार और दोस्तों से बातचीत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेतीबाड़ी और मौसम की जानकारी लेते हैं।
1: जी हाँ।
2: मनोरंजन करते हैं और जरूरी काम भी निपटाते हैं, लेकिन सुविधा के साथ सावधानी भी जरूरी है। श्रोता साथियों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि लंबे समय तक ईयरफोन लगाने के बाद कान में आवाज गूंजती है, कान बंद से लगते हैं, घंटी या सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है, या फिर सामान्य आवाज समझने के लिए मोबाइल या टीवी की आवाज बढ़ानी पड़ती है।
1: बिल्कुल।
2: अगर ऐसा होता है तो हमें अपने कानों के प्रति थोड़ा और सावधान हो जाने की जरूरत है। तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि मोबाइल और ईयरफोन का इस्तेमाल हम सीमित तरीके से कैसे करें और कानों की सेहत का ध्यान कैसे रखें।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इन सभी बातों को कार्यक्रम के माध्यम से हम जरूर जानेंगे, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
2: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल और ईयरफोन का इस्तेमाल कानों की सेहत को कैसे बचाएं। अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। सुबह आँख खुलने से लेकर श्रोता साथियों सोने तक मोबाइल हमारे साथ चलता रहता है। पढ़ाई हो, काम हो, मनोरंजन हो, किसी से बात करनी हो या कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, श्रोता साथियों मोबाइल हमारे बहुत से काम आसान कर देता है। मोबाइल के साथ ईयरफोन और हेडफोन का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है। लोग गाने सुनने, वीडियो देखने, ऑनलाइन पढ़ाई करने, गेम खेलने और फोन पर बातचीत करने के लिए श्रोता साथियों हम देखते हैं कि ईयरफोन का ही इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि ईयरफोन अपने आप में श्रोता साथियों कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि समस्या तब शुरू होती है जब हम इसे बहुत तेज आवाज में बहुत लंबे समय तक सुनते हैं। अंजलि जी, हम देखते हैं कि जब हम इसे बहुत तेज आवाज में बहुत लंबे समय तक या श्रोता साथियों बिना किसी आराम के इस्तेमाल करते हैं, तो हम देखते हैं कि तेज आवाज लगातार कानों तक पहुंचने और सुनने की क्षमता है वो कमजोर पड़ सकती है। कई बार श्रोता साथियों व्यक्ति को शुरुआत में इसका पता नहीं चलता है, धीरे धीरे हम देखते हैं कि कानों में आवाज गूंजना, कान बंद लगना, सुनने में परेशानी होना, ये सारी समस्याएं वो हमें दिखाई देने लगती हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही बात करें तो तेज आवाज कानों के लिए क्यों नुकसानदायक हो सकती है? तो श्रोता साथियों, हमारे कान बहुत संवेदनशील अंग है। कान के अंदर मौजूद छोटी छोटी संवेदनशील कोशिकाएं हमें आवाज सुनने में भी मदद करती हैं। बहुत तेज आवाज, लंबे समय तक तेज आवाज सुनने से इन पर दबाव पड़ सकता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि ईयरफोन लगाकर जब आवाज सीधे कान के पास पहुंचती है तो तेज आवाज का प्रभाव अधिक महसूस हो सकता है, खासकर तब जब कोई व्यक्ति कई घंटे लगातार ईयरफोन लगाकर रखता है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए केवल यह सोचना पर्याप्त नहीं है कि आवाज तो मुझे अच्छी लग रही है, इसलिए इसका नुकसान नहीं होगा। कानों को नुकसान कई बार धीरे धीरे होता है और शुरुआत में जैसा कि मनीषा आपने बताया, किसका पता भी हमें नहीं चलता। इसी के साथ अब बात करें कि ईयरफोन इस्तेमाल करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात, आवाज कम रखें। मोबाइल में गाना, वीडियो या बातचीत सुनते समय आवाज को इतना तेज न करें कि आसपास के सामान्य आवाज बिल्कुल सुनाई न दे। अगर आपके पास कोई व्यक्ति सामान्य आवाज में बात कर रहा है और ईयरफोन लगाने के कारण आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो यह संकेत है कि आवाज बहुत ज्यादा हो सकती है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए दोस्तों, लंबे समय तक लगातार ईयरफोन न लगाएं। ईयरफोन लगाकर घंटों तक गाने सुनना, वीडियो देखना अच्छी आदत नहीं है। बीच बीच में कानों को आराम देना भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि आप लंबे समय तक वीडियो सुन रहे हैं तो बीच में ईयरफोन निकालकर कुछ समय कानों को आप आराम दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि लगातार ईयरफोन लगाना क्यों सही नहीं है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि कई लोग ईयरफोन लगाकर घंटों तक गाने सुनते हैं और वीडियो देखते हैं। कानों को भी श्रोता साथियों आराम की जरूरत होती है, इसीलिए श्रोता साथियों लगातार लंबे समय तक ईयरफोन लगाने से हमें बचना है। यदि श्रोता साथियों पढ़ाई या काम के कारण ईयरफोन लगाना हमारे लिए जरूरी है, तो हमें बीच बीच में उसे हटाकर अपने कानों को आराम भी देना है। इससे श्रोता साथियों हम देखते हैं कि हमारे कान ही वो ठीक तरीके से काम करते हैं। अगर हम लगातार ईयरफोन लगाकर रखते हैं तो इससे हम देखते हैं कि कान में दर्द, भारीपन, आवाज गूंजना जिस समस्या है वो हमें दिखाई दे सकती है। इसलिए श्रोता साथियों ईयरफोन का इस्तेमाल है वो हमें सीमित करना है।
1: जी बिल्कुल मनीषा, यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि सोते समय ईयरफोन लगाने से हमें बचने की जरूरत है। कई लोगों की आदत होती है कि वो रात में मोबाइल पर गाने या वीडियो चलाकर ईयरफोन लगाकर सो जाते हैं। श्रोता साथियों, यह आदत कानों के लिए परेशानी पैदा कर सकती है और नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए कोशिश करें कि सोने से पहले ईयरफोन निकाल दें। इसी के साथ ईयरफोन को बार बार अलग अलग लोगों के साथ साझा करने से बचें। ईयरफोन के कान में जाने वाले हिस्से को साफ करना भी जरूरी है। गंदे ईयरफोन से कान में संक्रमण या जलन जैसी समस्याएं हो सकती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि कई बार कान में दर्द और आवाज आने जैसी चीजें हमें सुनाई देती है, तो हमें सावधान हो जाना है। यदि ईयरफोन इस्तेमाल करने के बाद कान में दर्द, भारीपन, सुनाई कम देना, लगातार घंटी, सीटी जैसी आवाज महसूस हो, तो सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें। ऐसी समस्या बार बार हो रही है या बनी रहे तो कान, नाक, गला विशेषज्ञ जो होते हैं उनके डॉक्टर से हमें सलाह लेनी चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने मनीषा ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि मोबाइल का इस्तेमाल भी समझदारी से करें। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ ईयरफोन ही नहीं, मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल भी हमारी दिनचर्या पर असर डाल सकता है। मोबाइल को कान से लगाकर बहुत लंबे समय तक बातचीत करने के बजाय जरूरी होने पर स्पीकर मोड या कह सकते हैं कि हैंड्स फ्री विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन स्पीकर का इस्तेमाल करते समय भी आवाज बहुत तेज न रखें। बच्चों के मामले में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है।
1: हाँ।
0: मोबाइल और ईयरफोन लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल करने देने के बजाय पढ़ाई, खेल, बातचीत और दूसरी गतिविधियों के लिए समय देना चाहिए। परिवार के बड़े सदस्य बच्चों को केवल मनीषा यह न कहें कि मोबाइल मत चलाओ, बल्कि उन्हें समझाएं कि मोबाइल का इस्तेमाल कैसे सुरक्षित तरीके से करना है। बच्चे अगर मोबाइल पर वीडियो देखते हैं तो उनकी आवाज बहुत तेज न हो। ईयरफोन के इस्तेमाल की जरूरत हो तो आवाज कम रखने और बीच बीच में ब्रेक लेने की आदत डालें। माता पिता खुद भी उदाहरण बने। अगर बड़े लोग दिन भर ईयरफोन लगा कर रखेंगे तो बच्चों को सुरक्षित इस्तेमाल समझाना मुश्किल होगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि कान केवल ईयरफोन की आवाज से ही प्रभावित नहीं होते हैं साथियों, आसपास का वातावरण भी श्रोता साथियों इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम देखते हैं कि मशीनों, लाउड स्पीकर, पटाखों, तेज संगीत, बहुत शोर वाली जगहों पर श्रोता साथियों लंबे समय तक रहना हमारे कान के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। अगर काम, किसी जरूरी परिस्थिति के कारण लंबे समय तक तेज आवाज वाले वातावरण में रहना पड़े तो श्रोता साथियों उचित कान सुरक्षा उपकरण का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यही अगर बात करें कि पढ़ाई के दौरान ईयरफोन का इस्तेमाल हमें कैसे करना है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि आज ऑनलाइन पढ़ाई के कारण विद्यार्थियों को मोबाइल, कंप्यूटर और ईयरफोन का इस्तेमाल है वो बढ़ता जा रहा है। पढ़ाई के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल किया जाए श्रोता साथियों, लेकिन आवाज ही उसका स्तर हमें श्रोता साथियों सामान्य रखना है।

0: और लंबे समय तक ईयरफोन को हमारे कानों में नहीं लगा के रखना है। बीच बीच में पढ़ाई करते समय या आप गाने सुन रहे हैं या कोई अन्य कार्य श्रोता साथियों आप कर रहे हैं तो बीच बीच में हमें उन ईयरफोन को हटाकर अपने कानों को आराम देना भी है।
1: बिल्कुल मनीषा, यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग खेतों में काम करते समय मोबाइल पर गाने या रेडियो कार्यक्रम सुनने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खेत, सड़क या बाजार जैसे स्थानों पर दोनों कानों में ईयरफोन लगाकर आसपास की आवाज से पूरी तरह कट जाना सुरक्षित नहीं है। कहीं वाहन आ रहा हो, कोई व्यक्ति आवाज दे रहा हो या आसपास कोई खतरा हो तो उसकी आवाज सुनाई न देना दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, सड़क पर चलते समय, वाहन चलाते समय या मशीन के आसपास काम करते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कम करने की जरूरत होती है। अगर आपको इनमें से कोई समस्या श्रोता साथियों बार बार हो रही है, जैसे कि कान में घंटी या सीटी जैसी आवाज आना, सामान्य आवाज सुनने में परेशानी होना, कान में दर्द या भारीपन महसूस होना, बातचीत समझाने में बार बार दिक्कत होना, टीवी या मोबाइल की आवाज लगातार बहुत तेज रखना, ईयरफोन हटाने के बाद भी आवाज गूंजना, तो अपनी सुनने की क्षमता की जांच करवाने के लिए आप स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं ताकि आपका जो इलाज है वो समय पर हो जाए और कानों से जुड़ी जो समस्या आपको दिखाई दे रही है उससे आप बच पाएं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि कान हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है। इसकी मदद से श्रोता साथियों हम दुनिया की आवाजों को महसूस करते हैं, अपने प्रियजनों की बातें सुनते हैं, संगीत का आनंद लेते हैं और आसपास होने वाली घटनाओं को समझते हैं। हम देखते हैं कि आज मोबाइल और ईयरफोन ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से श्रोता साथियों हमारे कानों पर अनावश्यक दबाव है वो बढ़ सकता है। बहुत तेज आवाज, लंबे समय तक लगातार ईयरफोन लगा कर रखना या ज्यादा इस्तेमाल करना, ईयरफोन लगातार लगाकर सोना और साथ ही श्रोता साथियों कान में वस्तु डालकर सफाई करना जिसे आदतें हैं उनसे हमें बचना है। साथ ही साथियों हम कहना चाहेंगे कि आवाज धीमी रखें, इस्तेमाल सीमित रखें और अपने कानों को समय समय पर आराम दें।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि मोबाइल हमारी जरूरत है लेकिन हमारी सुनने की क्षमता उससे भी ज्यादा जरूरी है। मोबाइल और ईयरफोन पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है, जरूरत है सही तरीके से सीमित समय के साथ इस्तेमाल करने की। याद रखिए कि कम आवाज, कम समय और बीच बीच में आराम कानों की सेहत के लिए जरूरी है। अपने कानों को आराम दीजिए, तेज आवाज को बचाइए और बच्चों को भी सुरक्षित आदतें सिखाइए। मोबाइल का सही इस्तेमाल अपनाएंगे, कानों की सेहत को सुरक्षित बनाएंगे, क्योंकि तेज आवाज से दूरी रखना ही हमारे कानों की सुरक्षा का सबसे बड़ा रहस्य है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज एक छोटा सा संकल्प आप सभी लें कि मोबाइल और ईयरफोन का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार करेंगे। आवाज को आवश्यकता के रूप से तेज नहीं करेंगे, लगातार लंबे समय तक ईयरफोन नहीं लगाएंगे और कानों में किसी तरह की परेशानी होने पर उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि सुनने की क्षमता एक अनमोल उपहार है, उसकी सुरक्षा आज की सावधानी से ही संभव हो पाएगी।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा आज के कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारी इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार
2: भाई ने बोनो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
3: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
2: होवे आज नाना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
0: वाग रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमरवावरा मर हित्ता भाई बोन ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलिनु
2: राम राम
0: होवे भाई बोनो आप सब हमले रिया हो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में
1: होवे भाई बोनो लेने हाजिर थे गये हूँ कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक नया विषय ने हाथी मनीषा बोन आज अपने कार्यक्रम में भाई बोनो तक की बातचीत नो विषय है कि गांव में पहले आपड़ा देखता था कि चौपाल लगती हती आज चौपाले हती ई आपड़े ज्ञान नु अनुभव सब युवा साथे ते की साझा करता था ने घणा आकानी जे चीजे हे ई असल थाती हती पण अवड़ेना टाइम में आपड़े देखी रहो कि गांव नी जे चौपाल है इनी संस्कृति धीरे धीरे खत्म थाती सही रही है ता समस्या केम वधी रही है आना हूँ कारण है इने माते आपड़ा ने ध्यान आलवानी जरूरत है भाई मुनो आपे कारे गौर करू है कि जय चौपाल माते कारे शामे हित मन का बेईन ने एका बीजा ते की वाते करता हता यहाँ से सन्नाटो थे गयो है आखिर वो केम थे रू है आजकल आपड़े देखो हो कि आ सब चीजे नती थई रही तो आनु प्रभाव आपड़े गांव ने समाज माते केवु पड़ी रू है ने आज परंपरा है इने जीवित राखवो आपड़े बल्ले केम जरूरी है आ हंगरी वाते आज आपड़े कार्यक्रम ने माध्यम ते की सणवा वारा हूँ
0: હવે અંજલી બોન વાતે તે આપણ કરંગા કાર્યક્રમ ને માધ્યમ કતી પણ આપ બરહામળા આગીત ને મોરે કર આપડી વાતે
1: હવે તો ભાઈ બોનો આપ હંબર તરેજુ આપડું રેડિયો આપડી વાતે વાગડ રેડિયો 90.8 FM માતે

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून।